कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और लगभग 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है एक संक्षिप्त जानकारी अब से लेकर दिन भर हमारी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद नेहा बेनीवाल लेकर आएंगी कार्यक्रम सुप्रभात। इसके साथ साथ आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। फिर से हिंदी में समाचार होंगे सुबह के 7 बजे। 7:02 से सुनिएगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसे लेकर आएंगे निखिल कुमार। इसमें वन महोत्सव सप्ताह पर एक विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। नेहा बेनीवाल फिर से होंगी हमारे साथ ठीक 8 बजे सुबह गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप ताजा तरीन बॉलीवुड गानों पर आधारित यह कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर आएंगे निखिल कुमार प्रातः 9 बजे।

सुबह के 10 बजे जुड़िएगा एक बार फिर से हमारे साथ हिंदी में समाचारों के साथ। इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसे आज आप तक पहुंचाएंगी रेणुका। रेणुका के बाद बबीता रावत लेकर आएंगी कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स सुबह 11 बजे से। दोपहर 12 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। इसके बाद पुनः रेणुका ही लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारी अन्य दैनिक प्रस्तुति प्ले इट कूल।

मेरा वाला सॉन्ग, ये कार्यक्रम बबीता रावत लेकर आएंगी आप तक 1:02 से दोपहर के 2 बजे सुनेगा आशियाना कार्यक्रम, जिसे एसएम शाहिद प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। हमारी नियमित स्वास्थ्य प्रस्तुति रेडियो डॉक्टर से जुड़ना ना भूलेगा। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएंगी आज श्वेता शर्मा, और इसमें विशेषज्ञ होंगे आयुर्वेद विशेषज्ञ केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के डॉक्टर विनोद यादव और डॉक्टर राखी मेहरा, एक अन्य आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर दिन भर तक आप सुनेंगे हमारे साथ। कुछ देर में प्रस्तुत है हिंदी में समाचार, 6 बजने को है।

नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक विचार विमर्श से साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंतकुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 8 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा। नए दिशा निर्देश में 1 नवंबर से निर्माण गतिविधियां रोकने के साथ साथ सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिन में यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। और खेलों में रांची पहली बार ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीम का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अमरीका का मुकाबला बोस्निया और हर्जोगोविना से हो रहा है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। और अंत में क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुबह के 6:05 होने ही वाले हैं और अब से कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन और कार्यक्रम सुप्रभात उसके बाद बिल्कुल जारी रहेगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
4: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एफआर मीडिया एकेडमी।
5: जी हाँ, अपनी वादी के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का लेखा एक दिन ईश्वर हमसे जरूर लेगा। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे कार्य सदा भलाई, करुणा और निस्वार्थ से भरे हों, जिन्हें देखकर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रसन्न हो और उसका अनुग्रह ठीक वैसे ही जैसे मूसा, सैमुएल, डैनियल पर बना रहा, तुम पर भी सदा सदा बना रहे।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि विश्वास करने पर ही हम ईश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर होगा तो तुम ईश्वर के एक से बढ़कर एक आश्चर्य कर्म को, जो असंभव सा प्रतीत होता है, अपनी नजरों से संभव होता देख पाओ।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम मनुष्यों का जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है, और इसीलिए जब हम अपने जीवन को ईश्वर के वचनों के अनुसार गुजारते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमारा परमेश्वर हमको न सिर्फ आशीषों से भरता है बल्कि हमारी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है।
1: मुझे शक्ति दे यीशु, हर बाधा को पार करूं, तेरी कृपा बनी रहे।

दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बता देते हैं हमारा वो नंबर, जिन पर आप हमें मैसेज या फोन करके प्रभु के प्रेम के बारे में और जान सकते हैं। और आप हमें 9693644242 पर, जी हाँ, 9693644242, और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471, जी हाँ, 7678438471। आप इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

इसी मस्ती इसी स्फूर्ति के साथ हम नाचने गाने लग जाते हैं जब मौसम में सुधार हो जाता है। भीषण गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जो राहत पाई है गर्मी से, सच में यकीन मानिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए ये गाना मैंने कार्यक्रम के आगाज के साथ बजा दिया है, बहुत ही मज़ेदार गाना। और आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 पर प्रोग्राम सुप्रभात में। मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। सुबह के 6:25 और लीजिए 43 सेकंड पूरे हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन बहुत बहुत सारी खुशियों के साथ शुरू हो चुका है। जुलाई का महीना चल रहा है, आज 2 तारीख है, गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है। कल रात, सच बता रही हूँ, कई दिनों बाद बड़ी सुकून की नींद आई, क्योंकि मौसम अच्छा था ना तो गर्मी नहीं लग रही थी, उस वजह से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और सुप्रभात में तो देखिए हम जिंदगी से जुड़ी बातें करते ही हैं। और एक जापानीज प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है कि भाई फॉल 7 times गेट अप 8। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 7 बार गिरो लेकिन 8वीं बार उठो। और इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि असफलता के बाद कभी हार न मानना और हर बार नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करना। मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, और अगर इन्हीं सीखों के साथ हम अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। कई बार होता है ना कि यार हमें किसी से कोई सलाह चाहिए, तो वो सलाह इन्हीं कहावतों में हमें मिल जाती है। अगले गीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात में, मैं हूँ नेहा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुछ ना कहो, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत काम का हो सकता है। अब कुछ ना कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से कहते सुनते हैं तो तभी कहते सुनते हैं ना जब हमारे आसपास लोग होते हैं, हम अकेले नहीं होते। लेकिन कभी कभी ये जो अकेलापन होता है ना, ये बुरा नहीं होता। कई बार वही पल हमें सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ खुद से मिलवाता है जब हम अकेले होते हैं, खुद के साथ होते हैं, किसी और के साथ नहीं होते। जब आसपास शोर कम होता है तब अपनी आवाज़ साफ सुनाई देती है, अपने सपने, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत भी हमें दिखाई देती है। इसीलिए कभी भी जीवन में अगर कुछ समय अकेले बिताना पड़े तो उसे

सजा नहीं, एक अवसर की तरह हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी ही संगत में सहज रहना सीख लेता है वो रिश्तों को भी ज़्यादा सच्चाई और संतुलन के साथ जी पाता है, ऐसा मुझे लगता है। और आखिरकार सबसे बड़ी बात ये है कि अपने साथ का रिश्ता ही हर रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है, इसीलिए हमें ज़्यादा परेशान ना होते हुए अकेलेपन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह नोट करना चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए, खुद से मिलना चाहिए। दुनिया भर के लोगों से हम दिन भर में मिलते रहते हैं, जीवन भर में मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी खुद से मिलना भी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम सुप्रभात में। मेरा नाम है नेहा और समय बता दूं आपको सुबह के 6:51 बाय द रेनबो क्लॉक। और अब आपको बता दें कि आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर सुनने वाले हैं। तो कुछ ही देर बाद ठीक 7:00 होंगे हिंदी में समाचार, और 7:00 के बाद आप सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 7 से 8 के बीच में। निखिल आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे, और सुबह 8 से 9 के बीच में आप सुनिएगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा, और सुबह 9 से 10 के बीच में सुनिए दिल के तराने, गाने नए पुराने, नए और पुराने दोनों ज़माने के गाने हम आपको सुनवाते हैं। और क्या मज़ा आता है ना जब आप एक एरा से दूसरे एरा के गीतों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुबह 10:00 एक बार फिर से सुनिएगा हिंदी में समाचार, और 10 से 11 के बीच में प्रोग्राम रहेगा वेस्टर्न म्यूज़िक मैचलेस म्यूज़िक आवर के अंतर्गत रेणुका आपके साथ रहेंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के फ़ोन इन प्रोग्राम्स के बारे में। दोपहर 3 से 4 के बीच में महत्वपूर्ण प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली का रेडियो डॉक्टर लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आज का विषय रहेगा इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर विनोद यादव, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं आप, और साथ में डॉक्टर राखी मेहरा, आप भी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिएगा। और साथियों इसी तरह से आगे भी आकाशवाणी दिल्ली पर हर घंटे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रहेगा। बिल्कुल भी हम आपको किसी भी सेकंड खाली नहीं छोड़ेंगे। जानकारियां और मनोरंजन दोनों ही बातें आकाशवाणी के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप तक पहुंचाते रहें। और अब वक्त हो गया है सुबह के 6:52, लीजिए कुछ ही पलों में 53 मिनट यहां पर पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं। 6:53 बाय द रेनबो क्लॉक नाउ। और अब क्या करें, आपको आखिरी गाना सुनवाएं, कौन सा गाना चूज़ किया जाए। आप कई बार गैस करते हैं कि मैं गोविंदा का गाना बजाऊंगी, लेकिन आज गोविंदा का नहीं, आज मेरे एक और सुपरहिट स्टार का गाना, मेरे फेवरेट एक्टर का गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। और चलते चलते यही आप सभी के लिए मैं दुआएं करूंगी कि आप बहुत खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और अपने आसपास जो आपके लोग हैं, जीव जंतु हैं, अपने सभी लोगों का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि ख्याल रखना हमारा बहुत ही एक अच्छा सा भाव है जो हमें अपने साथ रखना चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नेहा को आप दें अनुमति, और इस महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारे से महत्वपूर्ण गीत, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कार्यक्रम का आखिरी गीत है, लेकिन सुंदर गीत के साथ, मीठे गीत के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, और 8:00 एक बार फिर से हम और आप मिलकर बैठेंगे और दिल्ली NCR की बातें करेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइशी के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक विचार विमर्श से साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर GNSS की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 8 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा। सरकार ने देशभर में व्हाट्सएप को यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 और इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। इस समय अमरीका का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से हो रहा है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के FM रेनबो पर। प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग एलियंस, यार आपके दोस्त आरुषि निखिल के साथ में। और जब इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज के दिन कौन सी प्रमुख घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि वर्ष 1985 में आज के दिन ही आंद्रेई ग्रेमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वहीं वर्ष 1940 में आज के दिन ही ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 में विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 2006 में इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ दिया था। और आज के ही दिन वो खास दिन था जब किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। और आपको बता दें कि विश्व खेल पत्रकार दिवस 1994 में आज के दिन मनाया गया था पहली बार। और वर्ष 2004 में आज के दिन ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। और ये इस तरह की घटना थी, इस तरह का ये इवेंट था जिसकी वजह से भारत की कई सारे जो जगह हैं उनको एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए एक पहल बहुत तेजी से शुरू हुई थी। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आपके लिए रेनबो पर।

बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक मस्ती भरा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। और आपको अब बता दें, हम कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करेंगे। तो असित भट्टाचार्य को सबसे पहले याद कर रहे हैं, वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम वैसे भी क्रांतिकारियों के बलिदान से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी एक चिंगारी से कई युगों को रोशन किया और उनका नाम इतिहास में इस तरह से दर्ज हुआ जैसे एक सितारे की तरह दर्ज होता है किसी का स्थान। और आपको बता दें कि जब हबीबगंज में 31 मार्च 1933 को एक डकैती हुई थी, उसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं अमेरिकी उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे को, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे एक उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और हमेशा उन्हें हिमशैल सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी कथाओं पर उनका मजबूत प्रभाव पड़ा जब उनके साहसी जीवन शैली और सार्वजनिक छवि ने कई पीढ़ियों तक उनका नाम रोशन किया। और आपको बता दें कि उन्हें 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने 7 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह और 2 गैर कथाओं के लिए काम किया था। उनके 3 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह और 3 गैर कथा कार्यों को मरणोपरांत भी प्रकाशित किया गया था। और उनके साहित्य को अमेरिकी साहित्य का क्लासिक भी माना जाता है। फिलहाल एक और प्यारा सा ट्रैक रेनबो पर आपके लिए।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6 और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आंसर। और अब आपको बता दें कि हम याद कर रहे हैं कालिंदी चरण पाणिग्रही को, जिनकी आज जयंती है। वे उड़िया साहित्य के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि वे आधुनिक उड़िया साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में भी याद किए जाते हैं और सबुज साहित्यिक आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में भी उनको गिना जाता है। उन्होंने उड़िया साहित्य में नई सोच और आधुनिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मातिरा मनीषा, जिसमें ग्रामीण जीवन, पारंपरिक संबंधों, त्याग, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सहित अनेक विधाओं का लेखन किया और उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही सुंदर समन्वय दिखाई देता है। और आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं स्वामी रामा को, जिनकी आज जयंती है। भारत के प्रसिद्ध योगाचार्य, आध्यात्मिक गुरु और लेखक के रूप में याद किया जाता है उन्हें। उन्होंने हिमालय की योग परंपरा का विश्वभर में प्रचार प्रसार किया और योग तथा ध्यान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आपको बता दें उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसके माध्यम से भारत और विदेशों में योग, आयुर्वेद तथा समग्र स्वास्थ्य की शिक्षा में उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। आपको बता दें उन्होंने जॉली ग्रांट में एक बड़े चिकित्सालय और चिकित्सा संस्थान की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिलहाल एक खूबसूरत संगीत आपके लिए रेनबो पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।

ये है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6 जहां पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। और अब हम आपको बता दें कि आज ही जयंती है आशालता बाबगांवकर की, जो भारतीय सिनेमा, मराठी रंगमंच और टेलीविज़न की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक फिल्मों, धारावाहिकों में अपने सशक्त अभिनय से विशेष पहचान बनाई। अपने एक लंबे अभिनय करियर में उन्होंने माँ, दादी और कई सारी चरित्र भूमिकाओं का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया। उनकी मुख्य फिल्मों की हम बात करते तो उनमें अपनापन, आँख मिचोली जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और आपको बता दें कि वे मराठी रंगमंच की भी एक प्रतिष्ठित कलाकार रही हैं और अपने सहज, संवेदनशील और प्रभावशाली अभिनय के लिए दर्शकों तथा समीक्षकों द्वारा खूब पसंद की गई थी। और उनकी कला और अभिनय आज भी भारतीय रंगमंच तथा भारतीय सिनेमा में बहुत सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। एक और प्यारा संगीत आपके लिए रेनबो पर।

और श्रोताओं, बता दें आपको कि आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद अजीज़ को, जिनकी आज जयंती है। भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने 1980 से 1990 के दशक में हिंदी, बंगाली, उड़िया और कई अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों फिल्मों में अपनी दमदार आवाज़ से लोकप्रियता हासिल की थी। आपको बता दें कि

ने मुख्य रूप से बंगाली, ओडिया और हिंदी फिल्मों में गीत गाए थे और उनकी पहली हिंदी फिल्म थी अंबर जो 1984 में रिलीज़ हुई थी और मोहम्मद अजीज़ ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला ये गीत गाया था और उन्होंने 1980 के दशक में 1990 के दशक से पहले तक ऐसे गीत गाए जो आज भी लोगों की ज़बान पर एक तरह से रटे हुए हैं और कई बार तो लोगों ने ये भी कहा कि वे मोहम्मद रफ़ी साहब के भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनका उत्तराधिकारी भी उन्हें माना जाने लगा था। वैसे तो उनकी कई सारे गीत हैं जो हमेशा लोगों के जहन में रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ही गाए गए हैं, ऐसा लगता है कि आज ही गाए गए हैं और उन्हें आज ही सुना जा रहा है पहली बार। जब भी आप सुनेंगे लगेगा पहली बार सुन रहे हैं लेकिन हर गीत में इतनी मेलोडी और इतना एक टच होता है कि आपको वाकई वो बहुत खूबसूरत सा लगता है। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को रेनबो पर।

भाई दिल तो हमने आपके नाम कर रखा है और आपने हमारे नाम कर रखा है, तभी तो दिल लगा करके आप हमें सुनते रहते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 102.6 जिसका नंबर है। और श्रोता आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं विद्या विंदो सिंह जी को, जिनका आज जन्मदिन है। वो लोक साहित्य के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास और लोकगीत पर हर विषय में उन्होंने अपनी कलम चलाई है और सबसे ज़्यादा उनको अवधि लोक साहित्य के लिए सराहना मिली है। विद्या विंदु सिंह जी को सबसे ज़्यादा ख्याति लोक साहित्य के क्षेत्र में मिली, इसमें अवधि भाषा के लोकगीत, मुहावरे और भगवान राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिनको कहा और सुना जाता रहा है। साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी मुख्य रचनाओं की हम बात करते हैं तो वधुमेद, सच के पाँव, अमर बल्लरी, कांटों का वन, वापस लौटे नीड, पलछिन, तुमसे ही कहना है, हम पत्थर नहीं हुए, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। और श्रोता आपको बताते हैं कि आज ही जन्मदिन है आलोक धनवा जी का, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध जनकवि हैं और बिहार से वो आते हैं। आलोक धनवा हिंदी साहित्य के ऐसे कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने 70 के दशक में भारत में कविता को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटियां जैसी कविताएं बहुत चर्चित हुई। दुनिया रोज बनती उनका बहुचर्चित कविता संग्रह। उनकी कविताओं को अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनुवाद किया गया। आपको बता दें कि उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान जैसे कई सम्मान दिए गए हैं। फिलहाल हम एक और गीत आपके लिए प्ले करते हैं एफएम रेनबो चैनल पर, जो बहुत ही खूबसूरत सा है, इसे आप एंजॉय कीजिए। इसके बाद लेंगे छोटा सा ब्रेक, उस पर आपसे बातें होंगी और भी। आप बने रहें आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

0: जो कि देश के पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 यानी कि तोक्यो पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। आपको बता दें कि वो वैसे तो शौकिया तौर पर बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन 2016 में उन्होंने बीजिंग एशियन चैंपियनशिप में पहली बार SL4 लोअर स्टैंडिंग में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक पर उन्होंने कब्जा किया था। उसके बाद उन्होंने तोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL4 के लिए देश के लिए रजत पदक जीता था। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपसे थोड़ी सी बातें और होंगी, उसके बाद हम लेंगे आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति। आप बने रहें रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग डेली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल जिसमें प्रोग्राम सुन रहे थे आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और अब थोड़ी सी कुछ आपके लिए काम की और भी हम बात कर लेते हैं, वो ये है कि भारत में इस समय मनाया जा रहा है वन महोत्सव सप्ताह, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, जो कि एक तरह से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। और इस सप्ताह को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा का विस्तार, जैव विविधता का संरक्षण और लोगों में प्रकृति तथा वनों के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए। इस अवसर पर देश भर में विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों द्वारा वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता रैलियाँ, संगोष्ठियाँ और कई अलग तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वन महोत्सव सप्ताह केवल एक संदेश ही नहीं देता कि आप वृक्ष लगाएं, बल्कि ये प्रेरित भी करता है कि आप स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि मानवीय जीवन के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए भी वृक्षारोपण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि भाई वन महोत्सव सप्ताह जुलाई के पहले सप्ताह में ही क्यों मनाया जाता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि ये मानसून की बारिश को अपने साथ लेकर आता है। तो ऐसे में इस मानसून की बारिश में जब आप अपना पौधा लगाएंगे तो उसके जीवित रहने की दर काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी केयर आप शुरुआत में अगर थोड़ी बहुत भी करते हैं तो बहुत ही जल्दी वो पौधा एक वृक्ष का रूप ले सकता है। क्योंकि पौधा लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे सस्टेन करना, उसे आगे बढ़ाना, उसे एक वृक्ष बनाना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप एक पेड़ माँ के नाम को भी जैसे अभियान को बढ़ावा दे करके इस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को, मस्ती कीजिए रेनबो पर। और मैं आपसे लूंगा थोड़ी देर के लिए अनुमति, हम फिर मिलेंगे, आप बने रहें FM रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ नेहा। सुबह के 8 बज चुके हैं और जब मौसम इतना सुहाना होता है ना, पता नहीं क्यों यार, मैं तो हंसती ही चली जाती हूं। हालांकि मैं वैसे भी हंसती रहती हूं, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है ना तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी हो जाती है एंड आई फील रियली रियली हैप्पी। आई एम होपिंग कि आप सभी के मन में भी इतनी ही खुशियों का फुहार जो है वो छाई होगी और मज़ा आ रहा होगा और आराम से आप अपने ऑफिस की तरफ निकल गए होंगे, काम की तरफ, स्कूल कॉलेज की तरफ निकल गए होंगे। तो चलिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये सफर एक घंटे का सफर है, इसे शुरू करते हैं मस्ती भरे गानों के साथ और कुछ दिल्ली एनसीआर की खबरें आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिलहाल कार्यक्रम का आगाज हो रहा है एक मजेदार गाने के साथ। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, मौसम बहुत सुहाना है, चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं मजेदार मौसम को, गानों को और ढेर सारी बातों के साथ।

0: वैसे अगर पॉसिबल है तो छत पे आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि बाहर मुझे लग रहा है कि बारिश हो चुकी है कई हिस्सों में और सड़कें बहुत ज़्यादा भीग चुकी हैं। तो अगर आपको बारिशें पसंद है तो आपको बिल्कुल छत पे जाकर थोड़ा सा खुद को भी भिगो लेना चाहिए। कितना मज़ेदार लगता है ना बारिश में नहाना और बारिश में भीगना। और अब आप ये काम कुछ दिनों तक कर पाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 7 जुलाई तक बारिश वाला माहौल दिल्ली NCR में देखा जा सकता है। और एक और खुशी की बात यह है कि करीब 48 घंटों के भीतर दिल्ली NCR में मॉनसून भी दस्तक दे सकता है। और मौसम जब अच्छा हो जाता है तो मूड और भी ज़्यादा सुहाना हो जाता है। दिल्ली NCR में बारिश वाला मौसम रहने की पूरी पूरी संभावना है। और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों के भीतर यानी कि लगभग 48 घंटों में दिल्ली NCR में मॉनसून दस्तक दे देगा। और इससे हम सभी को, जो भीषण गर्मी से हम जूझ रहे थे, उससे हमें राहत मिलेगी। और पीछे जो 3 दिन हमने देखे हैं उसमें मॉनसून ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में हमने देखा कि मौसम ऑलरेडी मॉनसून पहुंच चुका है और मौसम अच्छा हो गया है। तो दिल्ली में भी हम इसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप आज के तापमान की ओर एक नज़र डालना चाहेंगे? भाई बहुत ही बढ़िया इस समय टेम्परेचर है। राइट नाउ दिल्ली में टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 तक जाने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो चलिए, जब तक ये मौसम सुहाना है, ऑसम है मौसम, हम इसका मजा लेते हैं। और हाँ, साथ में सुनते हैं बेहतरीन गाने। अब जरा इन्हें मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 MaxTech।

सुबह के 8:21 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। और अब आपको बता दें कि दिल्ली में निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने से पहले अब पेरेंट्स की मंजूरी बहुत आवश्यक रहेगी और 15 जुलाई तक हर स्कूल में बनेगी रेगुलेशन कमेटी। बिल्कुल सही आपने सुना, अब निजी स्कूल केवल अपने स्तर पर फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करके उसे लागू नहीं कर सकेंगे। फीस बढ़ाने या उसमें संशोधन करने का हर प्रस्ताव पहले स्कूल स्तर पर गठित होने वाली स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी, जिसे SLFRC कहा जा रहा है, इसके सामने रखा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक सदस्य अभिभावकों के होंगे और समिति की मंजूरी के बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सकेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया जारी करते हुए सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक SLFRC गठित करने का निर्देश भी दिया है। साथियों, ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा और आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर 102.6 MHz के माध्यम से।

भाई ये तो राम जी की मेहरबानी है कि मौसम इतना सुहाना है और मेघ बरस रहे हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जब मौसम अच्छा है तो कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कितना मजा आएगा दिल्ली NCR में, तो आपके लिए है एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। एक और मस्ती भरा गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं ना जाएं, सुनते रहें गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR FM रेनबो दिल्ली 102.6 पर। अच्छा मैं कौन हूँ? मेरा नाम है नेहा।

0: चलिए बात करते हैं घूमने फिरने के बारे में। आप 1 से 15 जुलाई 2026 के बीच जा सकते हैं दिल्ली हाट जनकपुरी, जहां पे आपको 50 से भी ज़्यादा क्राफ्ट स्टॉल्स मिल जाएंगे। आप वहां शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं, काइंड ऑफ एग्जिबिशन भी है तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि वहां पर आपको क्या क्या देखने और ख़रीदने को मिलेगा। तो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स आप वहां देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, हैंडलूम, ज्वेलरी, होम फर्निशिंग्स एंड अदर लाइफस्टाइल आइटम्स आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली हाट जनकपुरी आप जाइए, और इसके साथ साथ वहां पर 3 से 5 जुलाई के बीच चल रहा है 35th मैंगो फेस्टिवल, जहां पर आपको द किंग ऑफ फ्रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। आप जरूर जाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने आम खाए, कैसा लगा एक्सपीरियंस, और क्या क्या आपने शॉपिंग की दिल्ली हाट जनकपुरी से, मुझे आप जरूर जरूर जरूर बताइएगा।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

बैंग बैंग का टाइटल ट्रैक बेनी दयाल की आवाज में। और आपको पता है कुछ लोगों की बज रही है बैंड, और वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क अनुशासन लागू करने के लिए गलत दिशा में वाहन चलाने वाले और अवैध पार्किंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया हुआ है। आपको पता है कि कितने लोग ऐसे हैं दिल्ली की सड़कों पर जो गलत तरीके से पार्किंग करते हैं और साथ में गलत दिशा में गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। इससे एक ही बात होती है कि अपनी जान तो जोखिम में आप डालते ही हैं, साथ में अपने साथ इतने लोगों की जान भी जोखिम में आ जाती है। तो ऐसे में इन लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए 25 जून तक गलत दिशा में वाहन चलाने पर 3 लाख से भी ज्यादा चालान और 2000 से ज्यादा FIR अभी तक दर्ज हो चुकी हैं, और अवैध पार्किंग के लिए 10 लाख से भी ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। तो दोस्तों, गाड़ी चलाइए लेकिन जिम्मेदारी के साथ चलाइए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए। आप क्यों ये बात नहीं समझते हैं कि जान आपकी भी उतनी ही जरूरी है और आसपास जो लोग पैदल चल रहे हैं या साथ में वाहन चला रहे हैं उनकी जान भी बहुत कीमती है। घर से निकले हैं गाड़ी में या पैदल, तो दूसरों को भी सही सलामत घर पहुंचने का अधिकार है, आपको भी सही सलामत घर पहुंचना चाहिए। इसलिए ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और किसी भी तरह की ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे आपको और दूसरों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: सुबह के 8:52 हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि आगे कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद आप लेंगे। तो ठीक 9 बजे कार्यक्रम रहेगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। इसके बाद सुबह 10 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद कार्यक्रम रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और 11 बजे के बाद कार्यक्रम रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स। 11 से 12 के बीच में बबीता रावत इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। दोपहर 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार फिर से होगा वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम प्ले इट कूल रेणुका। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। साथियों मैं आपको बता दूं हमारे फोन इन प्रोग्राम के बारे में। दोपहर 3 से 4 के बीच में सुनिए रेडियो डॉक्टर, ये एक सीधा प्रसारण होता है इस कार्यक्रम का। और आज का विषय रहेगा इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। हमारे आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद यादव, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राखी मेहरा भी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं। ये विशेष कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा, आपकी सेहत का हम ख्याल रखते हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से हर घंटे एक नया कार्यक्रम आपके लिए होता है, जिसमें होता है मनोरंजन और ढेर सारी जानकारियां। और अब वक्त आ गया है कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी को मैं सुनवाऊं। लेकिन उससे पहले पता है क्या होता है ना, दिल की कुछ बातें मैं हमेशा आपसे करना चाहती हूँ। देखिए अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अब जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपना काम कर लिया उतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि हमें अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने शहर के प्रति भी जिम्मेदार होना ज़रूरी है। इसलिए हमारा फ़र्ज बन जाता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने आस पास सफाई बना के रखें, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन करें। क्या हो जाएगा अगर हम 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुक जाएंगे ट्रैफिक लाइट पर, और फिर उसके बाद जब सिग्नल हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। मैं अपने आसपास इतने लोगों को देखती हूँ, 2 सेकंड का भी पेशेंस उनमें नहीं होता, भगवान ही जाने कहाँ जाने की जल्दी होती है। तो देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनका डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेहा आपसे अनुमति लेती हूँ और मौसम का आनंद लेते हुए ये प्यारा सा गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूँ FM रेनबो दिल्ली पर आप सभी के लिए। ये प्यारा सा गाना, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: स्टार्ट द फन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आइए अब सुनते हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

हर्षिता, फिलहाल मेरे चलने का समय हो चला है। रेणुका स्टूडियो में पहुंच चुकी है, लेकिन प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर। इसके बाद आप सुनेंगे बबीता रावत को बॉलीवुड ट्रेल्स में 11 बजे से, और फिर 12 बजे से आप सुन पाएंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्लेट कूल एक बार फिर रेणुका के साथ में। और फिर 1 बजे समय होगा मेरा वाला सॉन्ग का, जिसे पेश करेंगी बबीता रावत। फिलहाल मैं लेता हूँ अनुमति आपसे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सुबह के 10 बज चुके हैं और पेश है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकेइची के साथ नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी हैं और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवली हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का

कार्यभार संभाला। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह हुई बारिश से दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। और खेलों में फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के मैच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। डूरन कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले रांची, इंफाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रॉइड में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: This is Akashwani Rainbow 102.6 and you're listening to Matchless Music. And to make this beautiful rainy day more beautiful, I have a very special song by Lata Mangeshkar. And let's enjoy this rainy day with this rainy song.

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: दिस इज आकाशवाणी रेनबो 102.6। सो टेल मी, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड? बिकॉज इफ यू आर फ्री एंड इफ यू एंजॉय लाइव म्यूजिक, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजिट द स्टाइन ऑडिटोरियम इंडिया हैबिटेट सेंटर ऑन 4th ऑफ जुलाई अराउंड 7:30 PM एंड यू कैन एंजॉय वेस्टर्न कोरल म्यूजिक कॉन्सर्ट बाय कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलर्टन। यस, एंड द nearest metro would be again Jorbagh and Khan Market. There is this walking distance, and if you are looking for parking space, there are gate number 1, 2 and 3, and you can enjoy this free event, but you have to reach the event on time because it is first come, first serve basis. The seating would be there, and yes, of course, you can call the sign auditorium for any last minute changes or if you want to, you know more about the event. And I'll be telling you about more event, but before that, let me play a song by John Lennon, and the track is

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की प्रधानमंत्री शिनाए ताकाइची के साथ नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाला। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन

दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह हुई बारिश से दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। और खेलों में फीफा विश्व कप राउंड ऑफ 32 के बीच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। डूरन कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत महीने की 25 तारीख को कोलकाता में होगी। टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। और भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स, और मैं लेकर आई हूं बहुत सारी बॉलीवुड की बातें, जहां पर बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोग और बॉलीवुड जगत में क्या क्या हलचल हो रही है वो सारी बातें आपको यहां पर पता चलने वाली है ठीक 12 बजे तक। और साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का क्विज भी आपके साथ खेलेंगे, तो सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड की बातें।

भाई तुम ही दिन ढले तुम ही दिन चढ़े, हम आपके साथ हमेशा बरकरार हैं। इंफोटेनमेंट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम है और बॉलीवुड की बातें तो होंगी होंगी क्योंकि बॉलीवुड की बातें होने के लिए ही तो बॉलीवुड ट्रेल्स है। और बॉलीवुड की बातें होती हैं तो ज़रूर से हम इस बात में बात करते हैं कि कल कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है। और जिस फिल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा है उसका नाम है अल्फा। जी हाँ, आलिया भट्ट स्टारर मूवी है ये, शबरी बाघ है इसमें और साथ ही साथ एक छोटे से कैमियो में ऋतिक रोशन भी आपको दिखाई देंगे एजेंट बनकर। हाँ, एक एजेंट के तौर पर काम करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन इसके साथ साथ ही आपको बता दें एक और फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, वो कौन सी है? महेश बाबू वैसे तो अगले साल प्रियंका चोपड़ा के साथ एक SS राजामौली की जो फिल्म है वाराणसी वो लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस एक्टर ने एक गजब का हाँ थोड़ा सा सस्पेंस जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको दे दिया है। जी हाँ, साउथ के जाने माने फिल्म मेकर वेंकटेश महा के निर्देशक में बनी और साथ ही साथ जो महेश बाबू हैं उनके और उनकी पत्नी नर्मदा शिरोडकर के प्रोडक्शन में बनी हुई एक मूवी आ रही है राव बहादुर, जो कल रिलीज होने वाली है। जी हाँ, धमाकेदार ट्रेलर के साथ ये फिल्म अनाउंस हो चुकी है और सस्पेंस के साथ कूट कूट कर ये फिल्म भरी हुई है, यानी कि सीधे सीधे अल्फा से इसकी टक्कर होने वाली है। आप बोलेंगे साउथ इंडियन मूवी है तो कैसे टक्कर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो अल्फा मूवी है इसे पैन इंडिया में रिलीज किया जा रहा है और जो राव बहादुर है साउथ में चलेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और इसका जो हम ट्रेलर देख रहे हैं उससे हमें ये साफ पता चलता है कि एक एक जो स्क्रीन मूव हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। जी हाँ, बखूबी इसे उतारा गया है और शक है, ज़िंदगी बदल बदल कर इसमें आपको इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ट्रेलर में दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो बात है, इतना ढेर सारा जो सस्पेंस है वो इसमें क्रिएट किया गया है, तो ये फिल्म तो कहीं ना कहीं अल्फा को टक्कर देने वाली है। फिलहाल हमारी आलिया को हम एक अलग मूड में, एक अलग यॉनर में देखने वाले हैं और जब देखेंगे तो कंपैरिजन हो ही जाएगा। अभी बिलाल हाईवे का ये गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड रेल्स, बॉलीवुड की बातें हो रही हैं यहाँ पर। और जब बॉलीवुड की बातें हो रही हैं तो हमने अल्फा की बात करी, और अल्फा जैसे आपको पता है यहाँ पर मेन लीड में आपको दिखाई देंगी आलिया भट्ट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेन लीड में हमारी महिला प्रधान फिल्म बनने वाली है, यानी कि कुड़ियों का ही जमाना है। और एक फिल्म जिसने एक अलग ही छाप छोड़ दी थी उसका नाम था क्वीन, और अब क्वीन 2 भी आने वाली है। शूटिंग खत्म हो चुकी है इस फिल्म की, लेकिन क्वीन 2 की कास्ट को लेकर बड़ी सनसनीखेज अपडेट्स आती रहती हैं। हाँ, मेन लीड में तो हमारी कंगना है, लेकिन मेन लीड एक्टर कौन होंगे इसमें, चलिए बताते हैं आपको, सुनिए बहुत ध्यान से। और जब मेन लीड की बात आती है तो अभी रिसेंटली भारत भाग्य विधाता कंगना रनौत की फिल्म थी, और अब वो क्वीन 2 में नजर आने वाली है, जिसका डायरेक्शन विकास बहल कर रहे हैं, जो अजय देवगन की शैतान जैसी फिल्म को सफल बनाते हुए आ रहे हैं। और लंबे समय के बाद क्वीन 2 की चर्चा होगी, क्योंकि देखना यह है कि कौन, मतलब अब स्टोरी क्या होने वाली है। हाँ जी, लेकिन अब जब रैप अप हो चुकी है पूरी शूटिंग का, तो ऐसे में सब ये हैरान और परेशान है कि कौन है आखिर लीड एक्टर। तो आपको बता दें कि लीड एक्टर है सुबोध। कहा यह जा रहा है कि रैपअप पार्टी में सुबोध को कंगना केक खिलाती हुई नजर आई थी, और मेरे हिसाब से जब ऐसा होता है तो लीड एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं जो आपस में केक को शेयर करते हैं। तो ये अनुमान लगाई जा रही है, कयास लगाई जा रही है कि सुबोध ही इस फिल्म के मेन लीड एक्टर होंगे। ये पहला मौका नहीं होगा जब सुबोध और कंगना किसी फिल्म में एक साथ काम शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहला ही मौका है, और इससे पहले बहुत सी मराठी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, पखारू पखारू, रणमूल, अनुमानी, बाल गंधर्व, लोकमान्य, एक युगल पुरुष, पाणी, हर हर महादेव, ऐसी फिल्मों में उन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया और बहुत पॉपुलरिटी हासिल किया। अब देखना ये है कि हिंदी फिल्मों में उन्हें कंगना के साथ कैसे देखा जाता है। अभी अभी फिलहाल आप सुनिए क्वीन का गाना।

बॉलीवुड रील्स, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बॉलीवुड की बातें चल रही हैं, यहाँ पे एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली हैं और उनका बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार रहता है। आयुष्मान खुराना की बात करें तो हमेशा अलग तरीके की फिल्म लेकर आते हैं, इनके जो रोल्स होते हैं फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, चाहे वो विकी डोनर हो या फिर कोई और फिल्म में, अलग तरीके की उन्होंने हर रोल को निभाया है और एकदम डिफरेंट स्टोरीज होती है। और अब रिसेंटली ऐसा कुछ होने वाला है, अभी ऐसा नाम आने वाला है कि कोई एक फिल्म करने वाले हैं, या वो कौन सी फिल्म होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना पड़ेगा। अभी ये गाना सुनिए और फिर बता दें आपको कौन सी फिल्म होगी वो।

0: पत्नी और वो दो फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे। अब रिसेंटली आयुष्मान की ये फिल्म आई है और बिल्कुल अलग तरीके की फिल्म थी और कार्यक्रम मतलब काम भी उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा किया इसमें, इनका काम काफी सराहनीय किया गया है। लेकिन अब रिसेंटली कहा जा रहा है कि उनकी एक फिल्म और आने वाली है, और कौन सी आने वाली है, कब आने वाली है जी हम बता दें कि अगले साल 2027 पे वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी। और ये फिल्म किसकी होगी आपको बता दें, इस फिल्म का नाम होगा मू पापा। जी हाँ, मू पापा। और यशराज फिल्म्स और पोशंपा पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं इस फिल्म को, और प्रोडक्शन का कोलैबोरेशन पहली बार हो रहा है और आयुष्मान इसमें लीड रोल करने वाले हैं, ये फिलहाल तय है। लेकिन आगे की जो कास्ट है उसका नहीं पता कि कौन कौन करने वाला है। हाँ, ये बता दें कि समीर सक्सेना इसे निर्देशित करेंगे। और ये कौन है, इन्होंने ट्रिपलिंग, मेरी फैमिली, परमानेंट रूममेट जैसी सीरीज बना चुके हैं, और जितेंद्र कुमार स्टारर फिल्म जादूगर का भी निर्देशन इन्होंने किया है। तो अब जब इतनी अच्छी अच्छी सीरीज इन्होंने दी है तो फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और ये फिल्म होगी 19 फरवरी 2027 को रिलीज। आयुष्मान की अगली फिल्म कब आने वाली है ये भी आपको पता चलेगा आगे। सुनते रहिए हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी रेनबो पर वक्त हो चला है आपसे बॉलीवुड सरताज का क्विज पूछने का। आप सभी लोगों को है बेसब्री से इंतजार और बताएंगे आप हमें उस सवाल का जवाब, बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज। और जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा है। रिसेंटली आने वाली जो फिल्म है अल्फा, जी हाँ, जो कल रिलीज हो रही है, इस फिल्म में कैमियो करते नजर आने वाले हैं एक एक्टर, उनका नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। जी हाँ, अल्फा में कैमियो करने वाले एक्टर का नाम हमें लिखकर भेजिए 9868107070 पर, और बन जाइए बॉलीवुड सरताज। जो सबसे पहले भेजेगा जवाब वो बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज। और अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो हमें मजा आएगा आपसे बात करके भी।

जी हाँ, मैं और तू यानी मैं और आप मिल करके बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ बॉलीवुड के बारे में हमें पता चलने वाला है। अभी रिसेंटली जो मूवी गई है, आ रही है, चल रही है, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, और इसी के बारे में हम आपसे बातें करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त चल रही है ये मूवी और बहुत सारे स्टार्स हैं अक्षय कुमार के साथ। 36 स्टार्स इस फिल्म में जगमगाते हैं। सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म भी कह सकते हैं, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भी कह सकते हैं, सिद्धिशा पाटनी स्टारर फिल्म भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टार्स हैं। किस किस का नाम लूँ, किसको छोड़ूँ, वैसे नाराजगी हो जाएगी इसमें तो। लेकिन बहुत सारे ज़बरदस्त एक्टर और एक्ट्रेसेस शामिल हैं इस फिल्म में, और ये फिल्म इस वक्त जो थिएटर्स है उनमें बहुत ज़बरदस्त कमाल धमाल कर रही है। और कमाल धमाल की बात की जाए तो हाँ, इस फिल्म ने अभी तक के 100 करोड़ का आंकड़ा जो घरेलू बॉक्स ऑफिस है उसमें तो पार नहीं किया है, लेकिन हाँ, वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इस फिल्म का 108 करोड़ के आसपास हो गया है। फिल्म की जो बजट है वो 125 करोड़ के आसपास बनी हुई है, और अब मुझे लगता है कि जल्द ही, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में इस फिल्म को ज़रूर इसका मुनाफा मिलेगा। और अब क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है ना कि हमें भी मूवी देखनी है, हमें भी घुमाने ले जाओ, तो शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़र्क अब इस वीक में दिखाई दे, ये फिल्म थोड़ी सी और बढ़े और इसका बजट जिस हिसाब से है 125 करोड़ का, उसको क्रॉस करते हुए ये फिल्म एक अच्छा कलेक्शन कर पाए। अभी अभी अभी हम क्या सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं वेलकम टू द जंगल का ये गाना।

इस गाने को सुनकर पूरी जंगल वाली फीलिंग आई ना। हाँ बिल्कुल, धमाल वाला म्यूजिक और कमाल वाले स्टार्स इस फिल्म में हैं। और जब फिल्म की बात की जाती है तो वेलकम का सीक्वल, प्रीक्वल, जो भी कह ले, ये फिल्म है। और नहीं, एक दूसरे से कोई स्टोरी मिलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगली सीरीज का इंतजार

ज़रूर करते हैं जब एक कोई फिल्म रिलीज़ होती है और हिट हो जाती है। और उसी तरीके से ऐसी कई फिल्में हैं इंडस्ट्री में जिसका इंतज़ार, जिसके सीक्वल का, जिसकी अगली फिल्म का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। कुछ ऐसी एक फिल्म की बात बताऊं जैसे पीके है, इसके सीक्वल का भी हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। उसी तरीके से मुन्ना भाई MBBS और मुन्ना भाई की जो थर्ड फिल्म बनेगी उसका भी हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। वैसे पीके के सीक्वल के बारे में राजकुमार हिरानी कुछ कुछ चीज़ें तो बोलते हैं कि इस फिल्म के जो सीक्वल है इसमें पीके के पोस्ट क्रेडिट्स से ये पता तो चलता है कि रणबीर कपूर को आगे दिखाया जाना है या नहीं, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि उनका बड़ा मन है कि वो रणबीर कपूर को अपनी आने वाली फिल्म, अगर वो पीके का सीक्वल बनाते हैं तो उसमें ज़रूर से लेंगे। और साथ ही साथ जब मुन्ना भाई की बात की जाती है तो मुन्ना भाई की स्टोरी काफ़ी समय से इस पर काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो मसाला है ना, जो ऑडियंस को पसंद आने वाला मसाला होता है, वो मसाला कहीं कहीं मिसिंग लगता है। तो वो वापस से फिल्म पर जो काम है वो शुरू कर देते हैं, फिर से उसको रिजेनरेट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छी लगे फिल्म। और मुन्ना भाई 3 जब बनेगी ना तो ऑब्वियस ही बात है अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हिट हुए। पीके का भी अगर कहें फर्स्ट पार्ट, अब जो आएगा नेक्स्ट पार्ट या जो भी है वो हिट होना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब किसी फिल्म का हिट हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है सेकेंड पार्ट के लिए। तो दोनों ही कहानियों पर काम चल रहा है, राजकुमार हिरानी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार हिरानी का नाम मैं क्यों ले रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। संजू के साथ उन्होंने, रणबीर कपूर के साथ काम किया है संजू बना करके, और अब आने वाली जो उनकी फिल्म है उसके बारे में भी बताऊंगी कौन है उसमें हीरो। आप सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।

वैसे फिल्मी दुनिया के गोते बहुत सारे हैं। OTT एक ऐसा गोता है जिसमें हर कोई डूबना चाहता है, और अब राजकुमार हिरानी भी इस समंदर के एक बड़े मछुआरे बन चुके हैं। जी हाँ, वो भी आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म में अपनी एक फिल्म लेकर जिसका नाम है प्रीतम और पेड्रो। और प्रीतम पेड्रो किस पर बेस्ड मूवी है? जी हाँ, ये है साइबर क्राइम पर बेस्ड मूवी। और इस फिल्म में बहुत सारी स्टार कास्ट है, बोमन ईरानी, संजय दत्त, विक्रम मैसी, अरशद वारसी, नैना सरीन, विनोद नागपाल, मोना सिंह और वीर हिरानी। जी हाँ, वीर हिरानी और कोई नहीं, राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, और इतना आसान रास्ता नहीं है उनके लिए। उन्होंने कहा इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पर मेन लीड में काम करने के लिए उन्हें एक ऑडिशन देना पड़ा है, और अच्छा खासा ऑडिशन देना पड़ा। और उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया था इस बात के लिए कि इस रोल में अगर तुमको फिट बैठना है तो तुम्हें ऑडिशन क्लियर करना पड़ेगा, तभी तुम इस रोल पर फिट हो सकोगे। कल ये फिल्म रिलीज़ हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पे, और देखना ये है कि कहानी बहुत छोटी छोटी छोटे छोटे किरदारों के साथ एक बड़ी कहानी बन रही है। तो अब ये देखना है कि जो OTT प्लेटफॉर्म में राजकुमार हिरानी है, क्या पेश करने वाले हैं हमारी जनता जनार्दन को। अभी फिलहाल ये गाना आप सभी लोगों के लिए एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम चल रहा है और जहां तक बात आती है हमारे बॉलीवुड सरताज की, तो आज मुझे लग रहा है मैंने दो दो लोगों को कॉल किया और दोनों लोगों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अब कहीं ना कहीं मौसम की खराबी का भी कह सकते हैं कारण, और कहीं ना कहीं लक्की भी बात है। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम फिर भी अनाउंस करेंगे उनका नाम, कौन है वो और कौन है वो। आसिफ सैफी, ये थे रास्ते में, इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मौसम की नज़ाकत है और आज बने हैं ये हमारे कौन, बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज जब बनते हैं तो हमने प्रश्न पूछा था, क्या बहुत आसान सा, अल्फा में कैमियो करने वाले एक्टर का नाम क्या है, और उन्होंने बताया ऋतिक रोशन। हाँ जी, शर्वरी वाघ भी इस फिल्म में है, और क्या है फिल्म का हाल अब वो कल पता चलेगा। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगी अगले प्रोग्राम में ठीक 1 बजे, जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और अपनी अच्छी अच्छी सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेजिएगा और बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो फुलफिल कर सकूं। अभी मैं लेती हूं अभी थोड़ी सी इजाजत, और इजाजत इसलिए ले रही हूं कि अगला जो प्रोग्राम आपके लिए आने वाला है वो है प्ले इट कूल। रेणुका लेकर आएंगे इस प्रोग्राम को, तो एंजॉय कीजिए उनके साथ।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथी के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश परवथानिनी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट वैश्विक कार्यवाही का आह्वान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के बीच मैच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। डूरन कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: You are tuned to Akashvani Rainbow 102.6 and listening to Play It Cool with your amigo.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: This is Akashwani Rainbow 102.6 and you are listening to Play It Cool. And today, I'm giving you some interesting facts about the month July. So, July has two birth flowers, the water lily and the larkspur. The water lily is a symbol of a pure heart, while the larkspur, especially its white form, represents the lightness of the heart. So if you know someone who is born in the month of July, please try to gift them these flowers or, you know, just tell them this information. Up next, we have Bee Gees with the track

0: बातचीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: You are tuned to Akashwani Rainbow 102.6 and listening to Cool Numbers in the program Play It Cool with your amigo Renuka. And today I'm sharing some fun facts about the month July. And as I said that July was not called July earlier, it was called Quintilis. But you know, the Anglo-Saxons had multiple names for the month of July, including Maedh Munath and Hay Munath. Respectively, these translated into the flowering of meadows and hay month. Hay month, hay July. You can also share some facts if you know about this month and let me know. And up next, I have this cool number lined up for you, which is

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिस इज आकाशवाणी रेनबो 102.6 एंड अक्वा इज वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स लिसन टू हर।
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री शिनाए ताकायशी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उनके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश परवथानेनी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राई पोर्टल का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के मैच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की है। डूरंड कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, उसका क्या है नाम? जी हाँ, मेरा वाला सॉन्ग। और मेरा वाला सॉन्ग में मैं हूँ बबीता रावत, आपके साथ आपकी पसंदीदा गीतों को सुनाने के लिए मैं हूँ तैयार। और आप भेजिए हमें अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट 9868107070 पर, आप भेज सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और एक से बढ़कर एक गीतों की फरमाइश कीजिए, मैं मजबूर हो जाऊं आज आपके पसंद के गीत को बजाने के लिए। फिलहाल अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा टिप टिप वाला है तो फिर क्यों ना यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, किसने की है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन्होंने ये फरमाइश की है कि ये मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए आपके लिए। हाँ जी, टिप टिप टिप टिप पानी बरसने लगा है और होप्सो कि बरसात का जो मौसम है वो अब शुरू हो जाए और ताकि जो दिल्ली वाले हैं या दिल्ली NCR वाले हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिले गर्मी से।

मैम आपको मेरा प्यार भरा सलाम, कैसी हो? प्लीज मेरा सॉन्ग प्ले जरूर कीजिएगा, बॉर्डर मूवी का, मोहम्मद कासिम, कीरतपुर जिला बिजनौर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो चलिए अब आपके पसंद के गाने को हम प्ले करते हैं यहाँ पर।

हाँ जी, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आ रखी हैं और ऐसे में हम क्या हैं, मजबूर, क्यों ना हो मजबूर, क्योंकि एक से बढ़कर एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है और ऐसे में किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को छोड़ें और किसे प्ले करने, थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। चलिए फिर भी एक प्यारा सा गीत अमरदीप कुमार, कुप्पम पट्टी जलकंडा पुरम सेलम तमिलनाडु से इन्होंने फरमाइश की है, फिर तेरी कहानी याद आएगा ये गीत। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस गीत को सुनने की और ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हैं गीत है। तो आप इंजॉय कीजिए इस गीत को और हम देखते हैं कि अगला गीत हम किसका बजाने वाले हैं। आप भी देखिए और सुनिए बहुत ध्यान से। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरे वाला सॉन्ग में अब जो सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं, भाई बारिश का माहौल हो रहा है और पर्वतों में काली घटा टकरा रही है, तो मुझे समझ में आना चाहिए या आपको समझ में आना चाहिए कि अगला गाना किस की पसंद का बजने वाला है। जी हाँ, अगला सॉन्ग जो हम प्ले करने वाले हैं वो है चांदनी फिल्म का, और किसने सॉन्ग रिक्वेस्ट ये कही है, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, इन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत

नौशाद चौधरी, अलीफिया इनकी बेटी, और सन अक्रम, इमराना इनकी वाइफ, राजीव नगर, मंडोली, दिल्ली 93 से रिक्वेस्ट करते हैं इस गाने की, जो है मेला।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। और साथ ही साथ मेरा वाला सॉन्ग में आपका है हमारा साथ और हमारा आपका साथ मैसेजेस के द्वारा है। 9868107070 पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम प्ले करेंगे यहाँ पर आपके पसंद के गीत। और अभी जो गाना हम प्ले करने वाले हैं वो राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र जी की रिक्वेस्ट पर है। और उन्होंने ऐसा भी कुछ लिखा है, अजीज बर्थ एनी

क्या उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और एक अद्भुत सॉन्ग है ना, तो प्लीज इसे प्ले कीजिए। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत खुदगर्ज मूवी से।

0: भाई दिन तो हमारा भी बन जाता है जब आपको हमें मैसेजेस के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपके सारे मैसेजेस पढ़े, पर क्या करें, समय का तकाजा है, सारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती, पर जितनी हो सकती है हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, किसका? यहाँ पर आया है हमारे पास मैसेज सलीम जसपुर उत्तराखंड से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गाने की, जो है
1: तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून,
0: रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, रब ने बना दी जोड़ी का ये गाना।

नरेंद्र सोनी देवीगढ़ से पटियाला से रिक्वेस्ट करते हैं चांदनी फिल्म के गीत का, लेकिन चांदनी का एक गाना तो हमने चला दिया है ना, चलिए आपका नाम ले लिया उसी गाने के साथ, समझ लीजिए कि आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। और वैसे यहाँ पर एक और हमारे पास मैसेज आया है, किसका मैसेज है ये? गुड

0: सुधाकर जी का बिड़ावन गांव उज्जैन जिले से बोलते हैं ये कि दोस्तों के गाने एंजॉय करता हूँ, किसी भी दोस्त की फरमाइश पूरी होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। भाई देखिए ना कितनी अच्छी विचारधारा है इनकी कि दूसरे की रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो समझते हैं कि इनकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। यहाँ पर सौरभ अरनेजा जी का गाज़ियाबाद से मैसेज आता है, लिखते हैं दोस्त मेरी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है लेकिन आप किसी भी शो में सारे इन्जॉय करते हैं शो, और देखिए इनका नाम भी आ गया। आप देखिए ना कितने लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम दूसरों की खुशी में खुश हैं। तो चलिए सबकी खुशी में खुश हुआ जाए, अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और उसके बाद वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अब देखते हैं किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी होती है।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
9: आज की रात मजा,
8: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
13: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
14: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मेरा वाला सॉन्ग में अब फिर से चलने वाली है सावन की कहानी। जी हाँ, सावन के झूलों ने मुझको भुलाया झुलाया और मैं परदेसी घर वापस आया। बहुत सारे घर ऐसे ही बुला रहे हैं अपने परदेसी लोगों को, और अपने घर पर मोहम्मद अजीज की आवाज में। किस फिल्म का गाना है ये? ये है निगाहें फिल्म का गाना। किसने रिक्वेस्ट की है? राजेश कुमार चौहान जालंधर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब देखिए इनकी पसंद का गीत हम चला रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास निम्बाराम गोदार बिरलोका नागौर राजस्थान से लिखते हैं कि बिना बरसात के हमें ये गाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बरसात भेजो नहीं तो हमारी फसलें जल रही हैं और हम मर रहे हैं। देखिए कोशिश तो हमारी ये रहेगी, क्या पता इन गीतों के ही सहारे वहाँ पर भी पानी बरस जाए। और कभी कभी होता ना कि गीत ऐसे राग लगाए जाते हैं जिसकी वजह से बारिश भी होने लगती है। तो चलिए सुनिए इन गीतों को, इन्जॉय कीजिए और ईश्वर से हमारी यही कामना है कि इस बार धरती कहीं भी सूखी ना रहे, हर कहीं जो हरी हरी फसलें हैं वो लहलहाएं और खूबसूरत हरियाली पूरी धरती पर बिखरे।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो का ये वाला जो सॉन्ग मैं बजाने वाली हूँ, मेरा वाला सॉन्ग में लास्ट सॉन्ग है। और सॉन्ग रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ये किशन वंजानी, नीलम किशु, स्वाति, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से इनकी रिक्वेस्ट आई है बाजीगर गीत के लिए। लेकिन अगले प्रोग्राम की जानकारी भी मैं आपको देती चलूँ। SM शाहिद होंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में प्रेजेंटर, और साथ ही साथ आशियाना प्रोग्राम में अ स्पेशल इंटरव्यू विद KK टंडन, फॉर्मर अनाउंसर, AIR जर्नलिस्ट एंड फिल्म पर्सनालिटी। इनके साथ जुड़िए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, आकाशवाणी से उनका नाता बड़ा गहरा, बहुत पुराना और बेहद खास रहा है। 22 साल तक इन्होंने आकाशवाणी में अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद 13 साल तक यूके लंदन में जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर के तौर पर बीबीसी हिंदी सर्विसेज में काम किया। उसके बाद यूके में ही अपनी थिएटर कंपनी थिएटर ग्रुप फॉर्म किया और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी और गुजराती में कितने ही प्लेज लिखे, एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किए। इतना ही नहीं, इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। हाल ही में एक वेब सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। इंटरनेशनल फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया। 2 किताबें उर्दू गजल की भी लिख चुके हैं और इसी साल अपनी मेमोयर ऑटोबायोग्राफी चेजिंग केओस भी रिलीज कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर स्पेशल गेस्ट। प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड डायनेमिक राइटर एक्टर डायरेक्टर श्री के टंडन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सामाइन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। शाहिद साहब, मैं बहुत ही तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने अपना समय निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और चूंकि आप आकाशवाणी से ही जुड़े रहे हैं, आपके करियर की शुरुआत आकाशवाणी से हुई, तो वापसी मैं ये जानना चाहूँगा शुरुआत करते ही कि कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग आ रही है। मैं अपने एक मित्र जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनसे बोल रहा था कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। शायद ये किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर मैं करता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सा, जैसे बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज चलने लगते हैं
0: जी।
1: और ये मेरी कर्मभूमि रही है 22-23 साल और इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि मुझे आपने एक बार फिर मौका दिया है यहाँ आकर अपने सामने से बात करने का।
0: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और आपकी आवाज़, आपका अंदाज वही बताता है कि जो हम भी सबको बताते हैं कि एज ए ब्रॉडकास्टर आपका जो अंदाज़ है वो वही है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ पहचान बनता है हमारे आकाशवाणी के साथ। तो सर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और एक गाना प्ले करेंगे, उसके बाद आकर के आपसे बातचीत का सिलसिला करेंगे शुरू। 102.6 आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन, आपका अपना रेडियो रेनबो। शाहिद आपके साथ और आज के आशियाना में हमारे खास मेहमान हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के टंडन, जो बॉलीवुड टीवी रेडियो जर्नलिस्ट आर्टिस्ट राइटर डायरेक्टर मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज हमारे साथ। आप बने रहें हमारे साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। और आज के आशियाना में हमारे बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद आपका।
0: सर, हमने जैसे शुरुआत करी, हमने बताया कि आपका करियर 22 साल आपने दिए हैं आकाशवाणी को एज एन अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट। उसके बाद तो फिर आपका जो सफर शुरू हुआ है तो वो फिर आगे बढ़ता चला गया और बुलंदियों को, मंजिलों को, नई नई और ऊंचाइयों को हासिल करता गया। तो ये सफर कैसा रहा सर?
1: ये सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखा। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये सफ़र लचीला भी रहा, टफ भी रहा, आसान भी रहा
0: जी,
1: लेकिन अगर जो कुछ भी मैंने आज किया वो आकाशवाणी की वजह से है।
0: वाह,
1: जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो थोड़ा बहुत कुछ लिखता हूँ या बोलता हूँ
0: जी,
1: ये सब इस आकाशवाणी की देन।

0: बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल भी अपने आप को हटा नहीं सकता
1: जी,
0: और मैं हर पल हर दम इस चीज को याद रखता हूं कि मैं कभी आकाशवाणी में काम किया करता था
1: जी। तो 22 साल का इतना लंबा समय जो आपका गुजरा, तो सर कुछ यादें भी रही होंगी?
0: जी हाँ, बहुत यादें हैं, और ये यादें जो आपने अभी जिक्र किया मेरी ऑटोबायोग्राफी में
1: जी,
0: उसमें बिल्कुल बहुत ही तफसील से हैं।
1: अच्छा,
0: क्षमा चाहूंगा। और क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा चैप्टर है मेरी जिंदगी का
1: जी,
0: तो उसको तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता था। और वो कुछ सफर, जैसे युवावाणी ज्वाइन किया 72 में, फेल हो गए ऑडिशन में,
1: अच्छा
0: फिर पास हुए, फिर आगे बढ़ते रहे, फिर ESD एक्सटर्नल सर्विसेज ज्वाइन किया, ड्रामा अनाउंसमेंट, फिर दिल्ली स्टेशन, फिर विविध भारती। आप मानेंगे नहीं, रोज सुबह
1: जी,
0: इन जनरल मैं आमतौर पर जब उठता हूँ तो, अब तो खैर रेडियो मैं सुनता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट
1: जी,
0: और UK में ये रेडियो नहीं आता, वहाँ का अच्छा। रेडियो सुनना इज लाइक मेरे लिए कुछ अजीब सी बात है, मतलब मुझे अजीब सा लगता है, वेरी लाउड। तो मैं रोज सुबह ये जरूर बोलता हूँ, ये आकाशवाणी दिल्ली है, मीडियम वेव 219 किलोमीटर, 1368 किलोहर्ट्ज पर, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या बात,
0: तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रवां कर रहा हूँ
1: जी,
0: कि शायद मुझे कभी मौका मिल जाए फिर करने का। तो ये मेरा हाल है, आप सोच सकते हैं
1: जी। और सर, जैसे आपने अभी वो इंट्रो दिया न्यूज वाला, तो वो आपको फिर से वो मौका मिला और आप वो कह पाए आज हमारे इस लाइव शो में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसे मैं छोड़ नहीं सकता था
1: जी। तो सर, आपकी इतनी ज्यादा जो है, मतलब जैसे मैंने कहा कि मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी आपकी, आपने मतलब एज ए ब्रॉडकास्टर शुरुआत करी और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले गए, फिर आपने ड्रामा सेक्शन में काम किया काफी लंबे समय, और फिर आप सीधे गए UK
0: जी,
1: और आप लंदन पहुंचे, और इतना लंबा आपने समय दिया BBC हिंदी सर्विसेज को, 13 साल
0: जी।
1: तो वो सर कैसा था एक्सपीरियंस?
0: वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं तो बिल्कुल ही आकाशवाणी से मुख्तलिफ था।
1: अच्छा,
0: क्योंकि यहां पर हम लोग क्रिएटिव थे
1: जी,
0: स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपने ढंग से, रिकॉर्ड ला रहे हैं अपने ढंग से, उसको बजा रहे हैं, उसको क्यू कर रहे हैं
1: जी,
0: तो शायद वो सिस्टम नहीं होगा यहां,
1: बिल्कुल।
0: तो वो एक बहुत ही, जिसे बोलते ना हम लोग, हमें लगता था कि हम बहुत उम्दा काम कर रहे हैं
1: जी,
0: इधर टेप चल रही है, कोई हेडफोन नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर रिकॉर्ड चल रहे हैं, उसको क्यू कर रहे हैं
1: जी,
0: फिर इतने में अनाउंसर न्यूज़ रीडर आ गए। तो ये जो हमारी क्रिएटिविटी थी ना
1: जी,
0: हमें लाइव रखती थी। वहां ये सब नहीं था, वहां बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं और आप हैं।
1: अच्छा, मतलब सारा
0: तैयार टेबल पर,
1: अच्छा
0: कंट्रोल है, माइक आपके हाथ में
1: जी,
0: और हम क्यू ऐसे मिल रहा है, रेड लाइट आ रही है और हम लोग बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो वहां मुझे थोड़ा सा, देखिए BBC ज्वाइन करना हर एक का सपना होता है अगर आप ब्रॉडकास्टर हैं,
1: बिल्कुल जी।
0: तो आपकी, जैसे बोलते हम, जैसे थिएटर के लोग हैं जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज आर लास्ट एम
1: जी जी जी, बिल्कुल
0: इसी तरह ब्रॉडकास्टर के लिए BBC।
1: और
0: BBC की अहमियत मेरी जिंदगी में तब आई जब इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ
1: जी,
0: क्योंकि उस दिन मैं अनाउंसर था ड्यूटी पर,
1: ओके
0: और हमें टोन डाउन करने को बोला, तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा क्यों भाई, और देयर वाज नो न्यूज़, कोई खबर नहीं थी कि क्या हो गया है देश में
1: जी।
0: जब शाम को पता लगा तो पता लगा BBC ने ये न्यूज़ जारी की है कि ऐसा ऐसा हो गया
1: जी,
0: वहां से एक अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी आई कि यार ये BBC क्या है, हम लोग खामोश हैं
1: जी,
0: और BBC ने दुनिया भर में खबर दे दी कि ऐसा हो गया, बस वहां से शुरू हो गया। कभी पूरा मतलब नहीं पता था BBC का
1: जी,
0: BBC क्या है
1: जी,
0: लेकिन ये सोचते थे कि इनके जो रिपोर्टर्स हैं क्या वो दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, कहीं छिपे हुए हैं, जैसे एक होता ना एक्साइटमेंट से
1: जी,
0: कि जैसे कण कण में बसे हुए हैं और हमें देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो दैट वॉज द थिंग।
1: ओके सर, आपने फिर उसके साथ साथ वहां पर अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर कंपनी भी स्टार्ट कर दी, लॉन्च कर दी, उसमें आपने प्लेज लिखे भी हैं, उनको डायरेक्ट भी किया है और उनमें एक्ट भी किया, और वो भी बड़ा लंबा आपका वो जर्नी रहा, तो वो किस तरीके का रहा और क्या अभी भी वो एस्टैब्लिश्ड है, अभी भी चल रहा है थिएटर?
0: हाँ, मेरी थिएटर कंपनी अभी भी चल रही है, लेकिन अफसोस ये है कि कोविड के बाद थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम लोग वहां पे UK में एक आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो हम लोग साल में 2 प्ले किया करते थे एक साल में, जिसके लिए UK गवर्नमेंट ग्रांट देती थी।
1: ओके
0: जैसे फिल्म कमीशन हो गया और लोकल काउंसिल्स हो गई, कभी £10,000 सालाना, कभी £15,000 सालाना। तो अब वो कोविड के बाद बिल्कुल खत्म हो गया।
1: अच्छा,
0: तो हम जैसे लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो एक तरह से जंग लग गया उसको।
1: तो सर, वहाँ जो आर्टिस्ट थे जिनके साथ आपने काम किया, क्योंकि आपने मल्टी लैंग्वेज वहाँ पर प्लेज किए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने पंजाबी और गुजराती में भी ब्लेज किए, तो वो आर्टिस्ट वहां पर होते हैं या आपने अपने?
0: नहीं, बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं।
1: अच्छा।
0: इस वक्त मैं आपको बताऊं, UK में गुजराती थिएटर इस

0: लिविंग द मोस्ट,
1: अच्छा
0: वो इतना प्रचलित है कि हम उसको छू नहीं सकते।
1: ओके
0: हिंदी थिएटर जो है, लोग कहते हैं कि छोड़ो यार फिल्म देख लेते ना, हिंदी थिएटर कहाँ जाना देखने के लिए, 20 पाउंड का टिकट है,
1: 20 पाउंड का,
0: हाँ, और 8 पाउंड के टिकट में उसमें अक्षय कुमार है, सैफ अली खान है, जी है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जाता हूँ अपने दोस्तों को बताने के लिए मेरा प्ले है, टंडन तेरा प्ले, हम टिकट लेके आएंगे, पास दे देना भाभी का, मेरा, बच्चों का, तो यहाँ हम लोग मार खा जाते हैं।
1: जी सर, आपने बॉलीवुड का जिक्र कर दिया है बीच में, मैं चाहता था कि उसके बारे में बाद में बात करूं, लेकिन अब जब जिक्र आ गया तो मैं पूछूंगा सर, बॉलीवुड में आपने जब एंट्री की तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो क्या क्या क्या आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या आपके पास ऑफर बैठे बिठाए आया, और मूवीज कौन कौन सी की आपने?
0: ऑफर तो खैर बैठे बैठे ही आया था
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विद व्हाट आई वॉज डूइंग। 2014 की बात है, बॉम्बे के एक बहुत नामी हैं मुकेश छावड़ा
1: जी,
0: यूके में टूर कर रहे थे कास्टिंग के लिए, तो किसी ने मेरा जिक्र कर दिया कि भाई अच्छा बंदा है, अच्छा बोल लेता है थोड़ा बहुत, तो ही कॉल्ड मी।
1: अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा।
0: अरे थैंक यू बहुत। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं मुझसे होता नहीं है ऑडिशन कैसे देना है, क्या परफॉर्म करना है, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू दैट। हालांकि यहाँ टेलीविजन में थिएटर किया, सॉरी टेलीविजन थिएटर किया मंडी हाउस
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा नहीं सर ये करेक्टर है आपको करना है एंड इट सूट्स टू यू। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, मेरा गला खराब है पता नहीं, वो थी शानदार।
1: ओके
0: आलिया भट्ट,
1: आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, ओके,
0: पंकज कपूर, वहां से जर्नी शुरू हो गई।
1: ओके
0: ये फील बदी जिसे बोलते हैं ना, वहां से ये हो गया, तो आई नेवर लुक बैक।
1: ओके उसके बाद फिर मल्टीपल आपके फिर ऑफर्स आते रहे, आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, बेल बॉटम में भी आपने रोल किया, और अभी हाल ही में भी आपने कुछ फिल्में की हैं।
0: जी हाल ही में मेरी 3 फिल्में मैंने पंजाबी की हैं
1: जी,
0: जो कि मैं लंदन से ट्रेवल कर रहा था इंडिया। okay. और ये रिसेंट इज माय नेटफ्लिक्स की सीरीज तस्करी।
1: जी जी जी।
0: और मैं फिर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ मुंबई, सो
1: अच्छा
0: दैट्स कीप गोइंग
1: ऑन। ये जर्नी भी जारी है
0: जी।
1: और सर इतना मैं ये अपने आप से मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था मैं जब तक आपसे बात नहीं हुई थी, इतनी सब चीजें सर आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं, इतना सब कुछ, आप राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, पोएट, और मतलब मैंने जैसे कहा, तो कैसे आप ये सब मैनेज कर रहे हैं सर, और फिर बॉलीवुड के लिए तो डेडिकेटेड टाइम देना होता है।
0: जी हाँ, लेकिन हम लोग कोई इस तरह का रोल नहीं करते कि हम लोग दिन रात उसी में लगे हुए हैं
1: जी,
0: बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए सेकेंड लाइन एक्टर
1: जी,
0: मतलब सीनियर, चाचा बन गए, ताऊ बन गए, हम लोग हीरो तो है नहीं
1: जी जी।
0: लेकिन जो मेरा मेन है जो वो है थिएटर और लिखना
1: जी,
0: लिखता रहा हूँ मैं गजलें आकाशवाणी के टाइम से,
1: अच्छा,
0: लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहाँ उन्हें शाया करवाने का।
1: लेकिन तो आपने सर उसको पब्लिश किया और बाकायदा रिलीज हुई है बुक
0: जी। जी तो ये अंग्रेजी जो मेरी बुक है, मेरी जो बायोग्राफी है, इस पर मैंने 5 साल काम किया है।
1: ओके
0: ड्यूरिंग ऑल माय ट्रिप टू इंडिया एंड एवरीवेयर, क्योंकि ये मेरा एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा लेगेसी देके जाऊं जो मेरे बारे में जाने, वो वहां के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उनको कुछ नहीं मालूम
1: जी।
0: सो दिस आई ब्रॉट इन द मार्केट जस्ट फॉर देम
1: जी। और सर इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो मैंने आपके बारे में ढूंढ करके निकाली, बहुत कम लोग जानते होंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं बताऊंगा वो इस खूबसूरत गाने के बाद। मोहम्मद रफी का ये गाना है, मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं और वापस आता हूं और आपसे बातचीत जारी करता हूं। आप सुन रहे हैं आशियाना शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
7: 102.6। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं KK टंडन साहब, जो जिनका सफर शुरू हुआ था आकाशवाणी से ही। वो एक बहुत ही मशहूर अनाउंसर रहे हैं, ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर रहे हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर, एक्टर, और दो पोइट्री की, गजल की, शायरी की किताबें भी लिख चुके हैं, और बॉलीवुड के अलावा वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आकाशवाणी के उसी प्रांगण में जहाँ से आप गुजर करके गए।
8: थैंक यू, धन्यवाद।
7: सर, हम बातचीत कर रहे थे आपके, मैंने बॉलीवुड के सफर की बात करी, बहुत सारी फिल्में आपने की और अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने जब पहली बार कैमरा फेस किया, वो हम जानना चाहेंगे, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा दौर था?
8: वो दौर था, एक, आपको याद होगा, एक फिल्म बन रही थी गांधी।
7: जी, बहुत ही फेमस हॉलीवुड का प्रोजेक्ट था वो।
8: तो उस वक्त कोई ऐसा तामझाम तो था नहीं, तो कुछ ऐसा वक्त था, मुझे शायद याद है कि हेलीकॉप्टर से कुछ पंपलेट्स एंड लीफलेट्स वगैरह थ्रो किए गए थे कि अच्छा, हमें इतना बड़ा क्राउड चाहिए।
7: ओके,
8: क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी हत्या का सीन उन्होंने
7: जी पिक्चराइज
8: करना था, और उससे पहले कुछ थी, तो हम तो साहब, हमें तो लगा कि हम तो स्टार बन गए।
7: जी,
8: एक एक खास तौर पे एक ये सामने आ गया कि ओहो, मैं तो

0: करूंगा जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था इसके पीछे की हकीकत क्या है।
1: ओके,
0: अशोका होटल में ऑडिशंस थी, हजारों की संख्या में लोग थे।
1: और सर ये मेरे ख्याल से अर्ली 80s या
0: अर्ली 80s, अर्ली 80s
1: जी।
0: और हम जब वहां पहुंचे साहब तो कोई पूछे ना।
1: अच्छा,
0: अब के टंडन ठीक है भाई, आकाशवाणी में छोटा मोटा नाम हो सकता है, लेकिन उस दुनिया में तो कोई नहीं जानता था। तो कोई सज्जन थे हमारे, कोई जान पहचान के निकला है, हु वाज वन ऑफ द टीम मेंबर्स। तो उन्होंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा यार मैं इसके, कहता तू मेरे साथ चल थोड़ा ऑडिशन दे, हमें बहुत से लोग चाहिए। मैं कहा क्राउड नहीं चाहिए। कहता नहीं नहीं डायलॉग होगा
1: जी,
0: ऐसी बात नहीं। तो हम लोग लेके गए तो उनसे बात बात हुई, तो उन्होंने कहा भी ठीक है हम आपको बता देंगे। तो आ गया न्योता।
1: अच्छा,
0: तो उसमें पता लगा कि हम लोग शूट करेंगे। उन दिनों ओमपुरी भी थे उसमें, और छोटा सा एक डायलॉग सीन था कि हम लोग भूखे हैं
1: जी,
0: गांधी जी बैठे हुए हैं और हम लोग उनके पास जमघट लगा के बैठे हैं कि बापू हमारा कुछ कीजिए, कुछ नहीं हो रहा, अंग्रेजों ने सब कुछ रोक दिया है, दिस एंड दैट। तो वो मेरे लिए एक पूरा बदन कांप रहा था। और ओमपुरी जी को मैं उनके एनएससी के दिनों से जानता था।
1: अच्छा,
0: तो वो सांत्वना देता था, टंडन घबराना यार ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं कह यार मैं तो कभी सोचा नहीं था
1: जी।
0: तो ये हल्की सी एक छोटी सी यात्रा की शुरुआत थी
1: जी। और सर इसके साथ साथ एक और मैं बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को भी कि इंडिया का जो पहला डेली टीवी सोप था
0: जी,
1: और उसका नाम था हम लोग, बड़ा ही फेमस, उसमें भी आपने काम किया है।
0: जी हाँ, उसमें भी मैंने काम किया है
1: जी।
0: और मैंने ऑडिशन दिया था जहाँ इस समय हमारा मंडी हाउस में वो है टेलीविजन सेंटर
1: जी,
0: वहाँ ऑडिशंस उस समय एक छोटी सी बैरक्स थी, वहाँ ऑडिशंस हुआ करते थे
1: जी। तो सर ये भी वही मेरे ख्याल से मिड 80s रहा होगा,
0: मिड 80s,
1: मिड 80s का दौर रहा होगा।
0: और उसमें भी मुझे कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, दो तीन दिन का काम था। तो आई प्लेड प्रभु, दादी जो हैं
1: जी जी जी,
0: जो जी, किया,
1: जी
0: उनका भतीजा।
1: अच्छा,
0: वो जब फैमिली में आता है तो एक तूफान लेकर आता है।
1: अच्छा,
0: तो भाई मेरी बुआ यानी मेरी जो दादी हैं सब,
1: तो आपने जैसे
0: बुआ हैं
1: जी, आपने जैसे कहा कि छोटा सा और बहुत ही कम समय का रोल था, लेकिन आपने बताया कि वो तो तूफान लेकर आया,
0: मेन कैरेक्टर बन गया था तीन दिनों का।
1: बताइए, तो बहुत बड़ी बात है।
0: तूफान ये मचाया कि भाई आप इनकी केयर करो, इनको तो कैंसर है।
1: अच्छा,
0: तो वो
1: आप ये कहने आते हैं,
0: रिवील हो गया।
1: Okay.
0: तो ये मेरे लिए बड़े एक जिसे बोलते हैं ना बड़ी ही वैल्यूएबल डेज हैं और वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं
1: जी,
0: कि जो मैंने निभाए। उसके बाद एक और चीज मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, मैंने जी. एक सीरियल की थी दिल्ली टेलीविजन के लिए, प्रहरी।
1: अच्छा,
0: दैट वाज बेस्ड ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस।
1: ओके,
0: और उसकी प्रोड्यूसर थी, शायद आप नहीं जानते होंगे, नीलिमा हरजाल जी, जो कि दिल्ली टेलीविजन पे काम किया करती थी।
1: ओके,
0: तो आई वाज वन ऑफ द एक्टर्स, वन ऑफ द टीम मैनेजर्स। तो हम लोगों ने उसे शूट किया था रणकच में।
1: अच्छा,
0: यहाँ से गए थे, और उसमें काफी बॉम्बे के ही लोग थे सारे। तो ये जर्नी का छोटा छोटा
1: तो ये भी बड़ा ही स्पेशल एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। और फिर जाहिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए हम जो भी काम करते हैं तो बहुत दिल से और बहुत जज्बे के साथ करते हैं।
0: 45 दिन का शेड्यूल था।
1: अच्छा, जी सर, हमारे पास समय तो बचा है कम, लेकिन बातें मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो छोटे छोटे मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ इंटरनेशनल फिल्म प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और टीवी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मैं आपकी उस उर्दू गजल की शायरी की किताबों पर आऊं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जल्दी जल्दी।
0: उर्दू की गजल की शायरी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मैंने ये 80s में लिखना शुरू किया था।
1: अच्छा,
0: मेरे आकाशवाणी के दिनों के दौरान
1: जी जी।
0: लेकिन इतना संजीदा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं
1: शायरी भी करूंगा,
0: बहर ऐसा मेरा पूरा होगा, मुकम्मल होगा। तो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसीज में थे।
1: अच्छा,
0: उन्हें जब मैं लंदन गया तो उन्हें संजोया कहां कहां से, क्योंकि कभी टिकट पे लिखी हुई है कोई छोटे से पेजेस, तो किसी ने देखा वहां पर उर्दू के हमारे बहुत ही शानदार एक मायनाज व्यक्तित्व था उनका, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा टंडन लिख।
1: तो सर कोई शेर कोई कोई कोई आपका पसंद का शेर सुनाइए प्लीज।
0: शेर सर याद नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा।
1: अच्छा चलें सर, हम आपसे बाद में सुन लेंगे
0: जी।
1: तो वो जो आपने फिर किताबें, फिर वो आपने उसको पब्लिश किया
0: जी। पहली किताब का नाम है, वो हिंदी और उर्दू दोनों में शाया हुई
1: जी। क्या नाम था उसका?
0: गुलदस्ता।
1: गुलदस्ता, वाह क्या बात है।
0: और दूसरी शाया हुई कविताओं की
1: जी,
0: पोएट्री। अब तीसरी मेरी इस वक्त जी समय पब्लिश होने के लिए तैयार है
1: जी। सर अभी हमने जो बातचीत की आपसे, वो लग रहा है कि समय तो बहुत कम था, लेकिन बातें बहुत सारी करने की थी, लेकिन अब चलते चलते क्योंकि समय अब बस खत्म होने ही वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप चलते चलते कुछ बताएं अपनी ऐसी कोई खूबसूरत याद, और आकाशवाणी के जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी कुछ आप अपनी दिल की बात शेयर करें।
0: आकाशवाणी के लोगों से मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप कुछ भी बोलें, अल्प भाषा बोलें, बेशक आपको पूरा ज्ञान हो, लेकिन शुद्ध बोलें।
1: क्या बात है सर।
0: खास तौर पे नौजवान पीढ़ी को जिनकी आकांक्षाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने की या थिएटर करने की,
1: जी जी,
0: भाषा जबान तलफ्फुज बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी। लेकिन सर एक चीज यहां मैं कहूंगा आपको रोक करके, कि जो सोशल मीडिया है उसने तो सब पूरी तरीके से बदल के ही रख दी।
0: हमारी

0: सोशल मीडिया और हमारे यहाँ का नॉर्मल जो मीडिया है
1: जी, जी,
0: डिजिटल मीडिया, उसने हिंदी तबाह कर दी है
1: जी,
0: उसने हिंदी तबाह कर दी है
1: जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात का असर लें और अपनी भाषा को भी सुधारें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। के टंडन जी हमारे साथ थे, जो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर, थिएटर डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, पोएट्री की बुक्स लिख चुके हैं, बॉलीवुड और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, और उनकी किताब चेजिंग केओस भी, ऑटोबायोग्राफी जरूर आप पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए।

0: नंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
3: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
3: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
3: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
3: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं।

0: अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं। ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है। प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
4: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
4: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही

0: एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
1: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा
8: रहा है?
9: देवदत्त कर्म का है।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।

0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है

0: जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
1: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस खास फोन इन कार्यक्रम का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर विनोद कुमार यादव, जो CGS नई दिल्ली में आयुर्वेद में CMO हैं, और डॉक्टर राखी मेहता आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राखी और डॉक्टर विनोद, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार जी।
1: अगर आपके मन में भी है अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल, तो उठाइए अपना फ़ोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर। सवाल जो है 011-2342-1080 और 011-2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर 9868-1070 पर भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन एक इस प्यारे से गाने के साथ।

0: डॉक्टर साहब, आपको ये गाना कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना है।
0: तो श्रोताओं, आपको भी गाना जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और अगर अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कीजिए ना फ़ोन हमें। हमारा नंबर है 01123421080 और 01123421082, और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आखिर इम्यूनिटी के बाद बारे में जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या?
1: देखिए, इम्यूनिटी जो है, इसको अगर सरल भाषा में हम समझें, रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व, यानी शरीर में जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं वो हम पे हमला करती हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता या उसकी रक्षक प्रणाली इस प्रकार की है कि उन व्याधियों से प्रभावित नहीं होती है और हम जीवन को पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन को जी सकते हैं, पूर्ण आनंद

0: के साथ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये दो प्रकार की होती है। जो माता से सीधे जन्म से आती है आपको, वह इम्यूनिटी होती है। जैसे कहावत होती थी कि माँ का दूध पिया है, तो वह इम्यूनिटी ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आहार विहार और जीवन शैली के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को विकसित करते हैं, उससे भी शरीर एक प्रकार की क्षमता विकसित करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है।
1: तो ये अगर कहें डॉक्टर साहब कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही एक डॉक्टर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन की प्रसन्नता है, आपका जीवन स्वस्थ है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं, तो शरीर अपना स्वतः डॉक्टर है। वो अपनी हीलिंग खुद ही करता है और एक प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति, उसकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी रहेगी।
1: अच्छा, तो अगला सवाल डॉक्टर राखी आपसे कर लें कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी। और इम्यूनिटी को तो पहले तो समझ लें कि आयुर्वेद में क्या है।
1: हाँ,
2: है ना
1: जी।
2: आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल एक है। व्याधि क्षमत्व मतलब जिससे व्याधि को रोका जा सके। हाँ। और व्याधि रोग प्रति मतलब जो उत्पादक तत्व हैं उनको मतलब उसमें इंडल ना हो, ये वाली व्यवस्था है। ये चरक ने सोचिए आज से
1: जी
2: तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व ये एक श्लोक दिया है
1: जी।
2: अब उसका अर्थ अगर हम आज के दृष्टिकोण से देखें तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली बेसिकली जो कहा गया है कि इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका
1: जी।
2: और वो रिस्पॉन्स भी क्या है कि उसमें मॉलिकुलर सिग्नल्स जो हैं वो आपको एक नेटवर्क के थ्रू ये आपको मैसेज देते हैं कि कोई भी जैसे एलर्जन आ गया, बाहर से कोई फॉरेन कंटेंट आ गए, या फिर आपको कोई पैथोजेंस हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरियाज हैं आपके इन। और इसके अलावा जो अनवांटेड सेल्स हैं जैसे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जैसे कैंसर की सेल है, इन सब से लड़ने के लिए किस तरह से बॉडी जो है वो एक पूरी मतलब एक डिफेंस अपनी बनाती है। और उसमें सेलुलर लेवल पे भी है तो वो फिजिकल भी है, केमिकल। अब जैसे आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है, तो फिजिकल में आपकी स्किन है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट चीजें हैं, फिर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं, तो केमिकली जो अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा
1: जी।
2: अच्छा, आंखों से आंसू निकलते हैं।
1: हाँ,
2: ये भी एक है ना।
1: हाँ।
2: तो देखिए, भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी हुई है, उसमें कुछ सेल्स हैं।
1: हाँ।
2: जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस हैं।
1: हाँ।
2: है ना, एक एनके होता है जो नेचुरल किलर होती हैं।
1: अच्छा।
2: और एक ये मतलब ये सारी इम्यूनिटी के साथ में आपको एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये जो है ये सारी इननेट है, मतलब हमें खुद दी गई है प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें डाली हुई हैं। और इसी को अगर हम एडॉप्ट कर लें, एडॉप्ट मतलब क्या हुआ कि कुछ जो हम फाइट कर लेंगे और फाइट करने के बाद यदि हम फाइट नहीं कर पाते तो मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि ऐसी चीज़ों को जो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी खुद की हैं या बाहर से आई हुई हैं जो हम पे अटैक करने वाली है हमारी सेहत पे, उनसे बचने के लिए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस व्याधि क्षमत्व जो व्याधि का जो रोग का प्रादुर्भाव है वो ना हो पाए, और व्याधि हो गई हो तो उसको कैसे रोकें। ये इननेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी आयुर्वेद में चरक ने कितने दिन मतलब कितने सालों पहले कही थी।
1: हाँ।
2: तो आपने कहा कि आयुर्वेद में उसके क्या हैं, तो उपाय तो बहुत हैं, अभी हम बताते चलेंगे।
1: हाँ।
2: लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी जो मैंने ये समझाने की कोशिश किया, उससे ये समझ में आना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञात थी। अब हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इससे कहते हैं धातुएं। धातुएं मतलब

0: जिससे हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है
1: जी,
0: ये धातुएं हैं।
1: हाँ।
0: अब ये धातुओं में कौन से, इन सब का निचोड़ एक ले लो, ओज।
1: हाँ,
0: ओज बोलते हैं ना कि आपका ओज कम लग रहा है।
1: हाँ,
0: मतलब आपकी वाइटैलिटी ओवरऑल, जो आपको एक जूस की जो जरूरत है, वो अब आपका कम लग रहा है। आप बुझे बुझे से लग रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। मैं बहुत साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये लोग समझें कि हमारे अंदर कुछ सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों को हम मजबूत कैसे दें। इसीलिए आयुर्वेद की जीवन शैली, इसीलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो कहा गया है, इन सब के साइंटिफिक रीजन है, हम एक के बाद एक लेते चलते हैं।
1: हाँ, तो डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये ओज या ओजस, ये कॉन्सेप्ट क्या है?
2: देखिए, ओज या ओजस ये वैसे हृदय में अष्टबिंदुआत्मक के इस मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, ये उत्तरोत्तर हमारे आहार जो हम खाना खाते हैं वो कितना पौष्टिक है। हाँ। उससे जो रस धातु, यानी उससे जो आहार रस मिलता है,
1: जी,
2: वो धीरे धीरे एक एक धातु की पुष्टि करता है।
1: हाँ।
2: और जैसे जैसे पुष्टि करता है तो अंतिम धातु जो शुक्र धातु बनती है, उसके बाद एक फाइनेस्ट मटेरियल बनता है ओज धातु, जिसका स्थान हृदय में है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
2: जो आपकी शारीरिक क्षमता, व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म को बूस्ट करना,
1: जी,
2: तो वो ओज धातु से प्रतीत होता है।
1: जी, जी।
2: और आपके स्वास्थ्य का ये पैमाना भी अच्छा बताता है।
1: अच्छा।
2: तो ओज धातु का बड़ा महत्व है।
1: हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है,
2: जी जी,
1: ये पूछना चाह रहे हैं कि लंदन का इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या महत्व है। ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से।
2: जी देखिए, लंदन में जो हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि आप लंदन क्यों कराते हैं, लंदनम आदव चिकित्सा, यानी पूरी चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब पहला पांव है, वो है लंघन कराना।
1: अच्छा।
2: तो लंघन क्यों कराएंगे? जब शरीर में दोषों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, आम दोष की अवस्था होगी, तो देखिए, बिना किसी औषध के आप शरीर के दोषों का पाचन कराने के लिए लंघन करा दीजिए। लंघन 3 से 7 दिन तक आप करा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: लंघन में जैसे हम लोग सुखोष्ण जल, उष्ण जल में रखते हैं, ठीक है, कि कुछ नहीं करिए, केवल पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी पीजिए, धीरे धीरे आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर शरीर के जितने कचड़े को है वो पाचन करा देगी।
1: जी।
2: और अग्नि उद्दीप्ति होने के बाद आपकी पूरी शरीर की फैक्ट्री एकदम से चलने लग जाएगी।
1: जी, जी।
2: तो इसलिए लंघन कराने से आपको सबसे बेसिक लाभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास किए, व्रत की प्रथा चालू की गई।
1: हाँ।
2: कि लोग जो रूटीन में खा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन व्रत में उनके मन की स्थिति भी अच्छी होगी।
1: हाँ।
2: शरीर की भी स्थिति होगी। तो लंघन उसका इस रूप में आप समझ सकती हैं।
1: जी, जी।
2: तो लंघन कराने से बहुत फायदा होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और इन सब के मूल में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए।
1: जी, तो ये इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर राखी आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने जो बताया कि ये लंघन की प्रक्रिया और पानी का इसमें बहुत महत्व होता है।
0: जी, जी।
1: तो पानी को लेकर ऐसा है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए?
0: देखिए, ये सब जो है ये अपनी सबसे पहले प्रकृति जाननी जरूरी है कि आप कौन से प्रकृति के हैं।
1: हाँ।
0: यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दोषों का क्या बैलेंस है।
1: जी।
0: तो उसमें हमारे वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या संयुक्त है, या दो दोष ज्यादा है। तो ये जानने के लिए आप किसी निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण करा लीजिए। उसमें साफ ये बता देंगे कि क्या खाना, क्या ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, क्या करना, क्या ना करना आपके लिए बेहतर होगा। आपने कहा था कि जैसे ये लंघन बेसिकली क्या है कि एक जो गट्स है ना हमारे, जो अगर मॉडर्न साइंस से भी देखें तो गट के जो इंटेस्टाइन है, मतलब गट में जो हमारे मेसेंट्रिक्स जो नोट्स हैं, साथ में प्रेयर्स हमारी जो वो है नोट्स, इन सब में आपके जो है वो जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स जरूरी हैं वो वहाँ पे हैं। अब वो कैसे खराब हो रही हैं कि आपने खाना में कोई अपने कंट्रोल किया नहीं।

0: जो पचा नहीं फिर खा लिया, तो हमारे यहाँ सब लिखा है कि बिना खाया मतलब अनशन, अति मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, और अध्य मतलब जब पहले वाला पचा नहीं और फिर खा लिया। तो ये सबसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब हमारे यहाँ अगर अनपचा हुआ खाना रखा
1: जी
0: तो उसको कहते हैं आम। आम ये मैंगोज नहीं, आम मतलब अपको, जो मतलब जो अभी मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और रस धातु रक्त धातु में नहीं हुआ है
1: जी।
0: अब आपने कहा कि लंघन, तो लंघन देखिए मतलब आपने अपने शरीर को खाने से वंचित रख रहे हैं, उसके अलग अलग पैटर्न है
1: जी।
0: कितना रखना, एक बार रखना, दो बार रखना, हाँ। तीन बार और रखना
1: जी।
0: कि केवल अन्न त्यागना या केवल पानी पे रहना या दोनों ही त्यागना, ये सब आपकी बॉडी के जो टेम्परमेंट है और आपकी स्थिति जो है उसको चिकित्सक परीक्षण करके लंघन कराता है।
1: अच्छा,
0: ये जो नॉर्मल उपवास आपने आज रख लिया और कुट्टू की रोटियां खा ली और ये कर लिया, तो ये लंघन नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
0: लंघन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो आम पाचन के लिए किसी भी पंचकर्म के पहले कराया जाता है।
1: अच्छा,
0: अब पंचकर्म क्या है, शरीर की शोधन की एक प्रक्रिया है
1: जी। पंचकर्म पर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे,
0: नहीं पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि रस धातु में अगर आम है तो वो रक्त नहीं बना रहा।
1: अच्छा अच्छा,
0: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका सीआरपी बढ़ गया, आपका जो है इंटरफेरॉन मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए
1: जी।
0: तो आम जो है वो सब स्रोतों अवरोध करता है। हमारे स्रोत क्या है, जिसके चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है, फाइन टिश्यूज जो है हमारे जो रस जिनको वो ले करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, वो नहीं हो रहा तो वो रुके। ये सुनिए, आपको लग रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज है बॉडी का, उसको ब्लॉक कर देंगे तो सर्कुलेशन वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये तो सबको मालूम है
1: जी,
0: है ना,
1: जी,
0: नंब हो जाएगा, है ना। तो आप उस चीज को समझिए कि जो पोषक तत्व तो जहां तक पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच रहे, तो अवरोध हो गया, तो अवरोध हो गया, उस आम को हटाने के लिए लंघन श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन चिकित्सक के निगरानी में। अब आपने पूछा कि पानी कैसे है
1: जी,
0: तो पानी का भी वही है, मैं एक गिलास पीती हूँ, आप दो गिलास पीते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, 70% जो है वो बॉडी वाटर मांगती है, अगर वो हट रहा है तो आपके वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है जिसके कारण आप स्वस्थ हो। जरा भी आप देख लीजिए, सोडियम बढ़ा दीजिए या कैल्शियम ये पोटेशियम बढ़ा दीजिए, या तो आपके सेल्स के ऑस्मोसिस है ना, वो सब आपकी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: और इसीलिए कहा गया है कि पानी जितनी भी सेल्स में, क्योंकि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इतनी पतली है कि उसमें जली उससे ही ये आर पार हो सकते हैं
1: जी,
0: और इसी से सिक्रीशंस ब्लड जो है वो आपको पोषण सारे बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है।
1: अच्छा।
0: तो उसको लिक्विड रहना कितना बहुत पतला भी खून ठीक नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, ये मालूम है ना
1: जी, जी, जी।
0: तो उसी तरह पानी पीने की व्यवस्था है। ये गलत फहमी है लोगों को कि गर्म पानी पियो कि ठंडा पानी पियो कि फला कियो कि खाने के पहले पियो कि खाने के, ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे हैं कि खाने के बाद किस प्रकृति वाले को पीना चाहिए और खाने के पहले किस प्रकृति वाले को
1: तो,
0: और कितना पीना चाहिए, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि 8 से 10 ग्लास एक बार में पानी पीना चाहिए, लेकिन एक इकट्ठे नहीं पीने चाहिए, सिप सिप सिप करके पीना चाहिए, ताकि जो जो उसका पर्पस है ना कि बहाना रसाना वो चलता रहे।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब एक मैसेज ले ले हैं, ये यशपाल शर्मा हैं जो द्वारका दिल्ली से हैं, इनका पूछना है कि हाउ हाइजीन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, पीपल हु आर वेरी पुअर एंड लिविंग रोड साइड एंड नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्यूनिटी, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि जो रोड मतलब सड़क के किनारे जो रह रहे हैं जो गरीब लोग हैं तो उनमें इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है या?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है इनका,
1: हाँ।
0: कि देखिए जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो फाइट कर लेते हैं
1: जी जी।
0: देखिए इम्यूनिटी केवल एक स्किन के थ्रू नहीं आ रही है, स्किन में जो बैरियर है, जो फिजिकल बैरियर है, और स्किन्स में ही जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके

0: बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज पैथोजेंस है, केमिकल्स हैं, आपके जो फॉरेन बॉडीज है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको रोकते हैं
1: जी।
0: लेकिन गट, मैंने कहा ना गट में 70% जो है वो इम्यूनिटी के सेल्स हैं
1: जी।
0: तो वो जो जो जिनको रोड में जिनको साबुन नहीं है अपने शरीर धोने का तो उनको खाना भी उतना ही है।
1: हाँ।
0: वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खा रहे हैं
1: जी, जी।
0: ये बात अलग है कि उनको माल न्यूट्रिशन है तो विटामिन सी डी जो हमें जरूरत है,
1: हाँ, हाँ,
0: है जी,
1: जी, जी,
0: ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन डी मतलब डी की कमी है,
1: हाँ,
0: वो अलग इशू है,
1: हाँ, हाँ,
0: कि भाई वो माल न्यूट्रिएंट है,
1: हाँ,
0: उनकी मैकेनिज्म भी स्लो हो जाएगी,
1: हाँ, हाँ,
0: आज नहीं कल। लेकिन जहां तक ये स्वच्छता की बात है
1: जी, जी,
0: टू मच हाइजीन, मैं आपको बता दूं कई लोग दिन भर अपने हाथ डिटॉल से धोते रहते हैं,
1: तो यही इनका पूछना है।
0: ये आपको मैं बता दूं दिस इज अनदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आपका हाथ को जरूरत नहीं है फिर भी आप धो रहे हो, लेकिन जब जरूरत है तब नहीं धो रहे हो। तो स्वच्छता कहाँ कब कैसे करनी है, देखिए हर चीज का एक साइंस है। टू मच हमारे यहाँ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित और बिल्कुल बिल्कुल भी वर्जित है ना, तो और उल्टा सीधा और भी वर्जित।
1: हाँ, हाँ।
0: तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल कहा है कि सम दोष समाग्नि, हर चीज सम इक्विलिब्रियम में रखिए,
1: हाँ।
0: तो प्रसन्न आत्मा भी रहे, मन भी रहे, इंद्रिय भी रहे और आप भी स्वस्थ हो
1: जी। डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद में टर्म है ऋतुचर्या
2: जी, जी,
1: तो ये ऋतुचर्या क्या होती है, हमें कैसे पालन करना चाहिए और ये हमारे इम्यूनिटी में कितना प्रभाव डालती है?
2: देखिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये एक ऋतु जैसे हमारे 12 महीनों में हमारी 4 ऋतुएं हैं, वैसे आयुर्वेद में षड ऋतु मानते हैं, छह ऋतुएं मानते हैं, पर ज्यादातर 4 ऋतुओं में हम समाहित करते हैं प्रभावों को। इन ऋतुओं में जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ शरीर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उसकी जानकारी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो आयुर्वेद में दी है वो इतनी बेहतरीन है, वो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन पे ही बात नहीं करती है, वो आपके आहार पे बात करती है, आपकी लाइफस्टाइल पे बात करती है, इन सब चीज़ों में किस तरह क्रामिक परिवर्तन करें। जैसे मान लीजिए इस समय हम एक ऋतु की चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु की, अब वर्षा ऋतु के लक्षण कैसे आएंगे, देखिए वर्षा ऋतु में हमारा अग्निमान हो जाएगा, यानी अभी अगर आप पेशेंट से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनमें लक्षण आ रहा है कि भूख नहीं लग रही है,
1: जी, जी,
2: पहला लक्षण, हाँ, इसका मतलब अग्निमान हो गया
1: जी।
2: दूसरा वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है,
1: हाँ,
2: या लूज मोशंस हो रहे हैं,
1: हाँ,
2: या घबराहट हो रही है
1: जी, जी।
2: ये सारे लक्षण प्रकृति में किन कारणों से आए, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी,
1: हाँ,
2: टेम्परेचर, इन सबसे मिला जुला होने की वजह से आप में परिवर्तन आए। अब आपको क्या करना है, आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें
1: जी।
2: खाना शरीर को कम दें,
1: हाँ,
2: तो हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा
1: जी।
2: जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं जिसमें लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, इन सब में कमी आ जाएगी
1: जी।
2: तो बिना कोई दवाई के यदि आपने इतना परिवर्तन कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
1: हाँ।
2: फिर क्या खाना नहीं है,
1: हाँ,
2: कोई जैसे कि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है
1: जी।
2: तो वात के प्रकोप से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे एक है जल में घुले सत्तू को वर्षा ऋतु में निषेध कहा है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि ये वायु का प्रकोप करके पेट में फुला देता है
1: जी।
2: तो इससे हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे आहार में तमाम ऐसी चीजें, जैसे गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी भारी भोजन,
1: हाँ,
2: यानी वह भोजन जो पचने में बहुत समय लगाता हो, जैसे पनीर है, तमाम आपकी मिठाइयां हैं, इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें,
1: हाँ,
2: ये सब चीजें हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। हल्का सुपाच्य, जैसे खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, हरी सब्जियां आ रही हैं उनको खाएं, पत्तेदार सब्जियों को रहने दें। क्यों, वर्षा ऋतु में पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं,
1: हाँ, हाँ,
2: तो उसकी वजह से हमको नुकसान ना हो तो पत्तेदार सब्जियों को हम निषेध करते हैं कि उनको मना करते हैं, और ऋतुजन्य फल,
1: हाँ,
2: और ऋतुजन्य सब्जियों का

0: सेवन करें, उसी तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अब सुन लेते हैं एक
0: हाँ
1: गाना।
0: हाँ
2: बिल्कुल,
0: बिल्कुल,
2: ऋतु अनुसार।
1: हाँ, ऋतु अनुसार।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। अगर आपके मन में भी आई अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल है तो उठाइए ना अपना फोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर जो है 0112342 1080 और 0112342 1082। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070। अब अगला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे पूछ लेते हैं
2: जी।
1: कि आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली पर काफी जोर दिया जाता है
2: जी।
1: तो ये हमारी

0: इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पंचकर्म क्या है।
1: देखिए, अगर त्रयस्तंभ की हम बात करें,
0: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं।
1: जी जी।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और पित्त मेरी प्रवृत्ति है।
0: जी,
2: तो पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी, मेरे दो मिथ्स है और दो ही मेरे सवाल है। तो पहला सवाल मेरा यह कि किसी शख्स के यदि इसकी पित्त प्रवृत्ति है तो क्या उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, होती है? दूसरा मिथ कि जो लोग मैंने सुना है कि अगर माँ के दूध के अतिरिक्त गाय का दूध पिए या बकरी भैंस का दूध पिए या डाबर चंद्रप्राश खाएं, सोना चांदी बैजनाथ चंद्रप्राश खाएं, तो इससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये कहाँ तक सही है? और तीसरा सवाल ये है मेरा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि पहले दवाएं वो प्रोड्यूस वो करते हैं, इन्वेंट वो करती है, डॉक्टर के पास बाद में पहुंचती है वो, तो अगर वो अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करती है मार्केट में तो क्या पेशेंट को डायरेक्ट दवाई खानी पूरा सेवन कर लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेके वह दवाई खानी चाहिए? और चौथा अहम सवाल मेरा ये है कि ये खासतौर राखी मेरा मैम से मेरा सवाल है कि मुझे ना क्या है कि ये लीवर फैटी या अल्सर में से कोई प्रॉब्लम है और ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, श्वसन एलर्जी, स्किन एलर्जी कुछ हद तक, और निद्रा की प्रॉब्लम है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्या ये भी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है क्या, और इसलिए मुझे घर बैठे बैठे क्या करना होगा? और इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ठंड में जाऊँ तो मेरी ज्वाइंट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नेक में और हिप्स में, और अगर गर्म वातावरण में रहूं तो उससे मुझे निजात मिलती है, पर मेरी पित्त प्रवृत्ति भी है, तो इस असमंजस में हूं मैं उसे ढूंढ में, मैं क्या करूं? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी राजेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि पित्त प्रकृति है आपकी, यानी कि आपकी जो है वो तीक्ष्ण अग्नि हम हो सकती है, और इसमें क्या है कि जो आपकी इम्यूनिटी जो रिस्पांस है वो भी बहुत फास्ट होता है, और इसी में एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीजेज भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि TH1 और TH17 जो है वो टाइप के जो फिनोटाइप हैं वो IgE आपका CRP ये बड़ा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में यदि आपको प्रकृति पता हो तो आप उसको उससे होने वाले जो एक मतलब वो बाय नेचर आपको मिला है तो उसको आगे ना बढ़ें और वो अलग रोग ना पैदा करें, इसीलिए व्याधि के जो उत्पादक तत्व हैं उनको रोकते हुए खानपान बताया जाता है, और आपकी व्याधि क्षमत्व प्रतिबल जो है, जो सहज बल है, कालज बल है, ये हमारे अलग अलग बल हैं, मतलब सहज जो आपको खुद का मिला हुआ है, का जो माता पिता से आपको प्राप्त हुआ है, आपके इनबिल्ट जो आपके कॉन्फ़िगरेशन से मिला हुआ है, और कालज में आपके जो ऋतु है, दिनचर्या है, आपका कैसा खान पान है, आप सही फॉलो कर रहे नियमावली आयुर्वेद की, तब आपको इससे तकलीफ नहीं होगी। तो आपने जैसा कहा कि ये आपको जो तकलीफ है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन ये नहीं है कि अब आपको वही झेलना है, आपको एक चिकित्सक को सलाह लेनी है, खुद मिलना है, और अपना पूरा एक डाइट प्लान, और आपके लिए मैं आपको बताऊँ जो पित्त प्रकृति है उनकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी हुई तो साइटोकाइनिन जो ये एक इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है ये फैक्टर, और ये आपका जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होता है। तो नींद कितनी आप करते हैं, रात में इरिटेटेड रहते हैं या एसोसिएटेड और भी कोई बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप मिर्च मसाले बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करके आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
3: अब हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो।
4: नमस्कार मैम।
3: नमस्ते, अपना नाम बताएं।
4: मैम को भी नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते
4: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोही लोनी जिला का।
3: जी अपना सवाल पूछें।
4: जी मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इनको वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि पैरों में दर्द वगैरह रहता है,
1: किस चीज़ के?
4: तो थोड़ा सा

0: हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाता है जैसे, तो इनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसमें हम जैसे कि घरेलू उपाय में क्या लें, जैसे कि काजू बादाम वगैरह ले लेते हैं, ये चीज लें या ना लें, किशमिश वगैरह जैसे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: किस चीज की तकलीफ है, किस चीज के कारण वीकनेस ज्यादा हो जाती है आपको?
2: हेलो, आप अपना सवाल दोहरा दें।
1: किस चीज से आपको वीकनेस,
0: हेलो,
1: किस चीज से आपको वीकनेस हो जाती है?
0: जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके बारे में जानना चाहते
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं, उनमें जब डायबिटीज ज्यादा बढ़ती है तो ओज धातु की क्षीणता की वजह से ये मसल लॉस होता है, मांसपेशी में जो उसके पोषक तत्व हैं उनका लॉस होता है। उस लॉस को रिकवरी करने के लिए जो घरेलू उपाय कुछ हैं वो मैं बताता हूँ आपको, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और तमाम डायबिटीज़ में होने वाली समस्याओं को। जैसे आप त्रिफला का नित्य सेवन करें। त्रिफला दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो रात में एक चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में पानी से लें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि होने से भी मधुमेह में आपको लाभ होगा। दूसरा, यदि त्रिफला को सुबह आप शहद से या पानी से लेंगे तो ये आपको रसायन के रूप में प्रयोग होगा, जो आपकी व्याधि क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, आंवला का मुरब्बा जो शहद में बना हो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग है, कच्ची हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप और सूखी हल्दी का पाउडर के फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको मधुमेह में लाभ होगा। इस समय वर्षा ऋतु में जामुन काफ़ी आ रही है तो जामुन खाइए, जामुन के बाद उसकी गुठली निकाल लीजिए और उसे सुखा के उसको पाउडर कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा इसमें डायबिटीज़ में। और ये सारी चीज़ें आपकी जब रोग को कम करती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक बढ़ाती हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक पंचनीम चूर्ण भी आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एंटी डायबिटिक के साथ साथ स्किन की कोई प्रॉब्लम है वर्षा ऋतु में उसमें भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उसमें स्वर्ण का प्रयोग है, जैसे वसंत कुसुमाकर रस का हम लोग प्रयोग कराते हैं, जहाँ एक्सट्रीम डायबिटिक वीकनेस आती है वहाँ गोल्ड की प्रयोग करने की वजह से आपको तुरंत नर्वाइन वीकनेस में, जो नसों की कमजोरी बताते हैं, वहाँ पर बहुत लाभ होता है। तो आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, खान पान में थोड़ा मिठास का कम करके प्राकृतिक चीज़ें, सीजन में उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग करें तो आपको आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी, आपके रोग में भी कमी आएगी।
2: तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंचकर्म के बारे में, तो बताएं कि ये पंचकर्म क्या है?
1: देखिए, पंचकर्म जो है एक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 विधाओं की खोज की गई, जो इसका जो सिद्धांत था कि शरीर को सबसे पास के रूट से गंदगी को या टॉक्सिन्स को निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लो आपके नाभि से ऊपर के हिस्से की टॉक्सिन्स निकालनी है अगर आपको, तो उल्टी करा के सबसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल उल्टी नहीं होती है, हम इसे वमन कर्म कहते हैं, जो पहला कर्म है। और कफ दोष, जो वात पित्त कफ है, इनमें जो प्रधान दोष, एक मेन दोष ऊर्ध्व भाग में ऊपर के हिस्से में कफ दोष रहता है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम स्नेह पान करा के उसको घी पिला के पेशेंट को तैयार करते हैं और फिर वमन कराते हैं। वमन की प्रक्रिया होने से आपका कफ और पित्त दोष, दो दोषों पे हम अच्छा प्रभाव लाते हैं और शरीर को अच्छा है। इसके बाद आता है विरेचन कर्म, यानी नाभि से नीचे के हिस्से में जहाँ पित्त दोष प्रमुखता से होता है और वात दोष, इन दोनों दोषों को नियंत्रण करने के लिए हम विरेचन कर्म करते हैं। तो दोनों का क्रम है, पहले आप वमन कराएं फिर विरेचन कराएं। दूसरे में नस्य कर्म कराते हैं, बस्ती चिकित्सा वात की शांति के लिए कराते हैं, और रक्त मोक्षण यानी ब्लड से संबंधित समस्याओं के लिए रक्त मोक्षण कराते हैं। तो इस प्रकार के 5 प्रोसीजर हम कराते हैं। अन्य पैरस प्रोसीजर्स भी हैं जो हम करा सकते हैं, तो रोगी पे हम करा देते हैं।
2: जी जी, अब अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो
2: जी, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार।

0: जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: नमस्ते
0: मेरी उम्र है 70 साल की।
1: जी।
0: पहले तो बधाई आप लोगों की तरफ से कि बहुत अच्छा आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो। आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज मिली है, क्या क्या चीजें हैं, मैं ध्यान से सुनने से। तो
1: जी,
0: तीनों
1: शुक्रिया,
0: को, तीनों आप बधाई पात्र हो, बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि कोई काढ़ा बना सकते हो आयुर्वेदिक उससे, जिससे कि
1: आपने
0: आप
1: अपना
0: जो है,
1: नाम क्या बताया?
0: रमेश।
1: जी रमेश जी, एक तो पहली बात है कि आप बीपी के हैं, तो कौन सा टाइप का बीपी है, कितने रेंज में है, ये परीक्षण एक बार एक चिकित्सक से जरूर दिखा लें। और ये बहुत गलत धारणा है कि
0: इसमें
1: बैठे
0: डॉक्टर
1: बैठे
0: साहब,
1: कोई काढ़ा अगर हम बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती हैं। आपको
0: नहीं,
1: कौन से
0: डॉक्टर साहब,
1: उसकी
0: एक
1: ज़रूरत?
0: मिनट एक मिनट
1: जी
0: डॉक्टर साहब,
1: जी
0: ऐसा ऐसा था कि जब ये कोविड वगैरह हुआ था तो काढ़ा के बहुत बहुत रेसिपी
1: अच्छा
0: आती
1: अच्छा
0: थी।
1: ठीक है जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उस वो मेरे को काढ़ा का पहले उस टाइम मैं बनाया करता था, वो मैं भूल गया, मिसप्लेस
1: ओके
0: हो गया है। तो
1: ओके
0: मैं चाहता
1: ओके।
0: हूँ कि आप कोई ऐसा काढ़ा बना जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो सकती है। बहुत इफेक्टिव था काढ़ा,
1: जी
0: जहाँ तक
1: जी
0: मेरे को याद
1: जी
0: पड़ रहा है,
1: जी
0: तो आप उसमें
1: वो
0: हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी, वो गिलोय का जो है वो
0: हाँ
1: हम
0: हाँ
1: लोग
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: काढ़ा देते थे, उसका रोल अलग था। गिलोय की मात्रा और किस तरह से बनाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रिसर्च से कंसर्न हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। जो नॉर्मल आप लोग तोड़ करके कुछ भी, जैसे हम लोग ज़रूरत पड़ने पे हम विष को भी अमृत बना लेते हैं, है ना, उसके संस्कार करते हैं। संस्कार यानी उसकी वो चीज़ें जो पॉइजनस है उनको हटा के कितनी मात्रा में, कितनी डोज में, किसके साथ, कब, खाने के पहले बाद में, ये सारी व्यवस्था एक चिकित्सक दवाई जब यूज़ करता है ना तो इसका विचार करता है। और अगर हमने, मैंने ये बहुत सारे प्रयोग देखे थे, जब काढ़े के बताया गया था तो लोगों ने सारी गिलोय साफ़ कर दी और ले लेकर के उसमें कई चीज़ें उनको रिएक्शन भी हुई हैं। इसी तरह जैसे आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि तुलसी दल, दो तुलसी दल भी जो है सुबह अगर आपने पानी के साथ में उसको निगला तो भी अच्छा है, क्योंकि चबा चबा के नहीं खाते, वो भी एक दिक्कत है। लोग बोलते चबाने, उससे भी दांतों का आपका इनेमल खराब होता है, उसके जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो खराब कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं, आपकी उम्र 70 साल की है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा की कितनी मात्रा लेना है, क्योंकि अश्वगंधा कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही, लेकिन कई बार बीपी को भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर कोई भी औषध ले रहे हैं, देखिए खाना और औषध में यही फ़र्क है कि खाना आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन चिकित्सक की सलाह से लोगे तो वो औषध बन जाएगा, और औषध जो है वो अपने हिसाब से लोगे तो वो नुकसानकारक जो है वो कहीं दवाई आपको और नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मेरी सलाह मानिए, एक चिकित्सक को दिखाना बनता है और उनसे एक बार अपना चार्ट बनवा लें और ज़रूर लें, लेकिन अश्वगंधा कितनी मात्रा में दूध के साथ में आप ले सकते हैं, ठीक है।
2: डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया सुधीर सिंह का, जो कुतुबगढ़ से आया है। वो पूछ रहे हैं कि कुसुमाकर रस गोल्ड वाला कितने दिन तक खा सकते हैं, और ये मलाई के साथ ठीक रहेगा या शहद के साथ?
3: देखिए, वसंत, कुसुमाकर रस जो है अपने चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें स्वर्ण जैसी औषधि होती है, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रयोग कराते हैं। शरीर में जितने समय में इसका लाभ आ जाए और आपकी समस्या का निदान हो जाए, उतने समय के लिए ही प्रयोग कराते हैं। लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं कराया जाता है। तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग और उपयोग करें और इसका लाभ ले सकते हैं।
2: और हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो,
4: मैडम जी नमस्कार,
2: नमस्ते।
4: और डॉक्टर साहब को भी दोनों को नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार
4: जी,
3: जी
4: मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ
3: जी।
4: मैं,
3: जी
4: गांव कुकनिया, डिस्ट्रिक्ट करनाला है जी।
3: बताइए।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं 2002 से दिमाग की दवाइयाँ खाता हूँ,
3: जी
4: और
3: जी
4: मेरा छोटा भाई है वो 2009 से,
3: जी
4: उसको सिजोफ्रेनिया और मेरे को ओसीडी है,
3: ठीक।
4: ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड में हमारा फैटी लीवर आया दोनों का, मेरा ग्रेड 2 है, भाई का ग्रेड 1 है। तो
3: जी
4: आप ये बताइए कि ये कैसे ठीक हो सकता है, और आयुष्मान कार्ड पे क्या है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त में मिल सकती।

0: है सर कहीं से, जैसे दिल्ली वगैरह से कहीं से भी
1: ये तो
0: आयुर्वेद कृपा या
1: देखिए,
0: आयुष्मान
1: हाँ
0: कार्ड पे।
1: देखिए, ये जो जहाँ भी ये स्कीम लागू है वहाँ क्या व्यवस्था है उसके हिसाब से आप लोकल स्थानीय स्तर पे इसको पता करें, ठीक है। दूसरी, जहाँ देखिए दो समस्याएं आपकी, एक लीवर की समस्या है जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ये दोनों भाइयों का पूरी तरह ठीक हो सकता है। और जो आपने अपनी तकलीफ़ बताई, ये तकलीफ़ थोड़ा कठिन है चिकित्सा में, लेकिन अगर आप सही चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप अपनी औषधियों का उपयोग करते हैं, आयुर्वेदिक और पंचकर्म का प्रयोग करते हैं, तो मानस रोगों में लक्षणों को काफ़ी कम किया जा सकता है और आपकी स्थिति को बेहतर सुधारा जा सकता है। बाकी पूरी बात तो आपको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।
2: हाँ, लेकिन आप यहाँ पे त्रिकटू एक होता है हमारा, सौंठ पीपल और मिर्च के से मिली हुई दवाई एक होती है, आपको मिल जाएगी। वो आप एक चुटकी खाना खाने के पहले ले सकते हैं, और दोनों भाई ले सकते हैं, आप OCD वाले और आप जो दूसरे भाई हैं उनको भी, क्योंकि मेडिसिन जब बहुत दिन तक आप लोग खाते हैं तो उससे लीवर कहीं ना कहीं कुछ उसमें डैमेज होता है, तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव जितने भी दवाइयाँ हैं वो आयुर्वेद में बहुत बेहतर हैं। आप किसी चिकित्सक की सलाह से ये आप अपने लीवर को भी ठीक कर सकते हो। जी
3: डॉक्टर साहब, एक नींद की समस्या,
1: जी
3: अभी स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर बात होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
3: लंबी
1: बिल्कुल
3: बात होनी चाहिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करते हैं जैसा,
1: बिल्कुल।
3: तो आयुर्वेद में इससे निदान पाने का और इम्यून सिस्टम मजबूत करने का और मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम?
1: देखिए, जो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए ना
3: जी
1: स्वस्थ रहने के,
3: जी
1: उनमें आहार,
3: जी
1: निद्रा,
3: जी
1: ब्रह्मचर्य,
3: जी
1: यानी निद्रा भी एक इतना बड़ा फैक्टर है।
3: हाँ
1: अगर सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो देखिए उस व्यक्ति की भूख डिस्टर्ब होगी और
3: जी
1: नींद डिस्टर्ब होगी,
3: जी
1: ठीक है। यदि एक व्यक्ति को सोने को सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होगा, जिसमें मानसिक लक्षण आएंगे। तो इन सभी समस्याओं में और नींद को सही से लाने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल, सरल, सुरक्षित औषधियाँ हैं। कुछ तो आपके आसपास भी उपलब्ध हो सकती हैं। इनमें अगर कोई औषध भी नहीं खानी है तो आप पंचकर्म में शिरोधारा का उपयोग करें।
3: जी
1: शिरोधारा से बिना औषध के आपको निद्रा आ जाएगी। दूसरी है नस्य कर्म।
3: जी
1: नस्य कर्म जिसमें कि आपके नाक में औषधीय तेलों का प्रयोग करके आपको नींद को हम लाते हैं।
3: जी
1: तीसरा है कर्णपूरण, यानी अगर आप कान में तेल डालेंगे, क्योंकि कान वात का स्थान है और वात जो है निद्रा को डिस्टर्ब करने में एक प्रमुख कारण बन जाता है, तो उससे भी हमारी वात की शांति से हमें निद्रा अच्छी आती है। तीसरा है पादाभ्यंग, यानी अपने पैरों की मालिश करना, तलवों की। यदि आप सोने से पहले अपने तलवों की मालिश करते हैं, इससे भी आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको नींद अच्छी आती है। तो इन सब प्रक्रियाओं से बिना औषध के भी नींद ला सकते हैं, और अगर आपको औषध की आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक की देखरेख में उपयोग
2: हाँ
1: करें।
2: जी हाँ, इसके साथ में प्राणायाम, ध्यान
1: जी जी
2: आप ये भी अपना सकते हैं,
1: हाँ
2: क्योंकि सकारात्मक भावनाएं जो हैं
3: जी
2: वो काफ़ी हद तक आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं,
1: बिल्कुल
2: और जिसके कारण आपके जो नर्वाइन जो है वो एक जो कॉर्टिसल लेवल स्ट्रेस के थ्रू आता है
3: जी
2: वो भी कम हो जाता है, और नींद पूरी करेंगे तो साइटोकाइनिन जो आपके लिए जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो
3: जी
2: भी पर्याप्त मिलता है। और एक तो देसी उपाय दादी नानी के जमाने से किया जा रहा है
3: जी
2: भाई,
3: जी
2: और वो है कि आप 1 ग्लास दूध, गर्म
3: अच्छा
2: दूध रात में
3: जी
2: पीना चाहिए, यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ, और यदि डायबिटिक हैं तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, उसमें कई लोग कोई मुनक्के डालते हैं कुछ, तो ये एक प्रक्रिया जो है दूध पीने वाली है। बाकी डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि पादाभ्यंग रात को सोने के पहले यदि किया जाए तो और
1: जी
2: बेहतर, और सबसे अच्छी बात है कि स्क्रीनिंग टाइम कम करिए, और वो भी आप लोगों को सोने के पहले, ये मोबाइल है, टीवी है, इससे कम से कम आधे पौन घंटे या 1 घंटे दूर रहें, और फिर देखिए थोड़ा खाने के बाद में वॉक जरूर करें।

0: खाने के बाद तुरंत लेटने जाए, छोटी छोटी आदतें हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो नियमावली है और पूरी लिस्ट है, आप किसी भी चिकित्सक से पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ तो फॉलो करिए।
1: जी। तो आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ जाना, और हमारे दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इम्यूनिटी बढ़ाने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम जानकारियाँ दी। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम नमो धन्वंतराय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय।
2: धन्यवाद।
1: आशा करते हैं कि आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है health@gmail.com।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन SSB के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, तो हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर DIG थे जो अभी IG हैं, और IPS संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक, बहुत
0: बता जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के

0: दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी
0: इसमें। जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
1: अच्छा।
0: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं, कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहाँ से ख़त्म हो गया, इस ऑपरेशन के बाद उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर जी। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर बाद में फ़ायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी
0: एक, जी जी जी।
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर, बहुत ज़बरदस्त
1: जी
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी।
1: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, आपने घर में बैठ करके, वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे

0: आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या बात,
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी।
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, उसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी
1: जी।
0: और दो बार आपको मिला है?
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर

0: तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
1: जी,
0: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें।
1: अच्छा।
0: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें। जी
1: जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था?
0: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
1: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
0: हमने नहीं, हमारी टीम और हाँ सब मिलकर,
1: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
0: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
0: जी।
1: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
0: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप। तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
0: जी जी जी हाँ।
1: तो ये जो जोश था, ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
1: जी।
0: फिर
1: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड, कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स।
1: अच्छा।
0: में ज्वाइन किया। जी
1: जी, तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा असम में पोस्टिंग हुआ।
1: अच्छा।
0: वहाँ भी एनडीएफ के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफ के एक कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ हाँ
1: जी। इंडो भूटान, तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा।
0: असम जल रही थी एनडीएबी का उससे।
1: अच्छा।
0: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है, ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी।
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन। हाँ, असम में आपने शुरुआत? अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत।
1: अच्छा,
0: हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
0: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में।
1: अच्छा। जी, फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
0: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
1: अच्छा।
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट

0: वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
0: जी
1: जी हाँ। लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज़ को हम याद
0: अच्छा
1: करते हैं। जी
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था।
1: जी
0: जी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
1: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
0: जी
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजीज बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ,
0: इन्फॉर्मेशन
1: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है।
0: जी जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो अपग्रेडेशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं।
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: जी,
1: तो
0: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया।
0: जी सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल आवर बिलविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोध हैं फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफकोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशन के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
0: क्या बात है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिल करके ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें,
1: फोर्स से ही मैंने, जी जी जी
0: जी, आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर

0: तभी कोर्स क्या है सर? हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी। अच्छा। इसमें कैसे कैसे नक्सल से कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे एसएसबी में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं अच्छा खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
0: ओके,
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अच्छा, चलने से लेकर हर चीज। और अच्छा, उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल अच्छा, से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके?
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जी जी। जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
0: अच्छा।
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे,
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर ये?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 महीने का होता है।
0: 1 महीना
1: जी जी जी जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा या कैसे आप इसको पूरा करते हैं, इतनी टफ ट्रेनिंग को क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है?
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा जी, भरे जी, रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा।
1: अचानक सब चीज़ होता है,
0: पहले से नहीं बताते?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके।
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
1: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता
0: है, मोटिवेटेड
1: रखने। हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी। हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
0: जी।
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
0: जी। आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
0: अच्छा
1: करना है जी, उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है,
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
0: जी जी,
1: वो उसमें एक्सपर्ट होने के

0: लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किए।
1: जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
0: जी,
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर पूरे देश में और 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरियंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजीडी चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हम हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा

0: रोशन रहे,
1: रोशन रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
0: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएँ अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते RJ सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: है। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर अब वक्त है रेनबो के न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपयुक्त उपचुनाव 30

जुलाई को होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मानसून में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए कल कोलकाता में विधायी और संसदीय प्रणाली संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। भारत ने सर्वमान्य कानूनी ढांचे की आवश्यकता दोहराई। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली में दस्तक देते हुए उत्तरी और पश्चिम राज्यों में आगे बढ़ा। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविनिया को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराया। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर मैं हूँ मस्त मलंग आरजी श्वेता आपके साथ और प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में आज क्या क्या होने वाला है, कहाँ की कौन सी खबर लेकर आई हूँ और कौन सी बातें आपके साथ करने वाली हूँ शेयर, ये जानना चाहते हैं तो बस मेरी गली यानी कि एफएम रेनबो की गली में आप इसी तरह से फेरा मारते रहिए, चलते रहिए, गुजरते रहिए और हमसे मिलते रहिए।

आप जुड़े हुए हैं एफएम रेनबो के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, आपने किया हुआ है ट्यून इन और दिल्ली एनसीआर में, इसके अलावा पूरे भारत में, और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे भारत के बाहर के देशों में भी आप हमें सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू। और इसके साथ ही आप जो आकाशवाणी की ये वाणी सुन रहे हैं, ये वाणी है मस मलंग आरजे श्वेता की। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी खबरें। खबरों में जो है आपको बताऊंगी कि किस तरह से कहां पर क्या चल रहा है दिल्ली एनसीआर में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको खबर बताऊँ, अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला है वक्त कुछ त्योहारों का, शादी ब्याहों का, तो उसमें गिफ्ट्स हम लेते हैं देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाए मार्केट और किसी से उसको रैप भी करवाएं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे अपना पर्सनल टच देना चाहते हैं, ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारी सी खबर, गिफ्ट वर्ल्ड एक्सपो, ये लगने वाला है दिल्ली में 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। हाँ जी, 30 जुलाई से, अभी मुझे मालूम है 2 जुलाई है, लेकिन अभी से बता रही हूँ ताकि आप लोग अपना टाइम उसी हिसाब से रेडी रखें, बाद में ना कहे कि श्वेता पहले तो बताया नहीं था, अब हम कैसे जाएं, है ना। इसीलिए मुझे मालूम था आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने बनाएंगे, वो बहाने मैं पहले से ही एकदम कैंसिल करवा देती हूँ। तो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक 10 बजे से ये गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो लगने वाला है दिल्ली में, हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में। और इसके साथ हॉल नंबर 6 में स्टेशनरी और पेपर गिफ्टिंग जो भारत मंडपम है वहाँ पर लगेगा नई दिल्ली में, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप बच्चों के साथ जाएंगे तो देखिए बच्चे भी खुश हो जाएंगे, वहाँ पर उनके पसंद की चीज़ें होने वाली है, स्टेशनरी होने वाली है, और गिफ्ट के आइटम्स भी काफ़ी सारे रहने वाले हैं। तो बस इसी तरह से आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, यहाँ पर मिलेगी आपको ढेर सारी जानकारियाँ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी पर आप सुन रहे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में मैं हूँ आपके साथ आप ही की अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप जानकर बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको घुमाती हूँ दिल्ली एनसीआर में, बताती हूँ दिल्ली एनसीआर के ये जगहों जगहों के बारे में, कहीं कहीं क्या कहाँ क्या क्या हो रहा है। मई पुहारों से खिले लोगों के चेहरे, दिल्ली एनसीआर में मॉनसून का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा रहा, कैसा लगा था कल? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दिल्ली में मॉनसून पहुंच तो गया, लेकिन इस बार ये अपनी तय तारीख से 5 दिन की देरी से आया है। पाँच ही दिन तो देरी हुई है ना, कोई बात नहीं, हम उतना सहन कर लेंगे, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका है जब मॉनसून जो है जुलाई में दिल्ली से में इतनी देर से पहुंचा है। पिछले 5 सालों में ये सबसे देर से आया मॉनसून है, और बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भाई मुझे तो बहुत राहत मिली है, और याद है आपको जब बचपन में हम जब छोटे हुआ करते थे तो जैसे ही बारिश होती थी ना, कैसे भागते थे घर से बाहर, छतों पर जाते थे या फिर ग्राउंड में जाते थे, और उन प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बूंदों को अपने हाथों में ले लेते थे और उसको ऐसे उछालते थे कि बस जैसे सारा जहान मिल गया हो। क्या आप भी ऐसा ही करते थे? अगर ऐसा ही करते थे तो बताइए ना जल्दी से मुझे। हाँ देखिए देखिए कैसे एकदम से बोला ना, हाँ जी हम भी ऐसे ही करते थे, सबके साथ यही होता है, मेरे साथ तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। मॉनसून आता नहीं है या बारिश होती नहीं है कि मन करता है एकदम जाके भीग ले। अब मॉनसून तो आ गया है, उसने दस्तक दे दी है अपनी 3 तारीख से, चलिए 5 दिन से देरी से ही सही, पर आ तो गया है। अब हमें तैयारी करनी है, किस चीज़ की तैयारी करनी है? मॉनसून से निपटने की। हाँ जी ज़रा ध्यान दीजिएगा अपने आसपास, कोई भी गंदगी जो है अगर हो रही है कहीं पर भी या फैली हुई है, तो आप ज़रूर अपने आसपास के जितने सफाई कर्मचारी हैं या विभाग हैं उनको बता दीजिए, ताकि वो समय पर रहते हुए वो सारी सफाई कर दें और मॉनसून में बारिश का जो पानी है वो आसानी से नालियों से जा सके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। अब बात हो रही है बारिश की और ये गाना ना हो, आए ऐसे कैसे हो सकता है, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में। ज़रा बस बिन बरसात में ही, अभी बरसात तो अभी नहीं हो रही है ना इस टाइम, बाहर जहाँ पर भी है, गाड़ी में है, ऑफिस में है, घर में है, सोचिए बस हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और उनका मज़ा ले रहे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल छम छम नाचने वाले हैं और नचाने भी वाले हैं आपको, क्यों? क्योंकि ये खबरें ही ऐसी मैं आपको देने वाली हूँ 102.6 FM रेनबो पर। मैं हूँ मस्त मलंग आरती श्वेता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में फिलहाल बात हो रही है भाई मानसून की। मानसून आ चुके हैं और बहुत ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल से थोड़ा जो है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी, काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होनी शुरू हो गई है दिन में भी। वरना ऐसा लग रहा था कि 38 डिग्री सेल्सियस है, बट ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम 50 डिग्री सेल्सियस में या उस तापमान में बैठे हुए हैं। इतनी गर्मी लग रही थी, ऐसा लग आग के गोले बरस रहे हो। बरसात आ गई है, मानसून आ गया है, इतनी खुशी मिल रही है, इतना चैन मिल रहा है। लेकिन इस चैन में भी जो है ना, आप अपना ज़रा ध्यान रखिएगा। कैसे रखना है ध्यान? ऐसे रखना है कि आप छाता लेके ज़रूर चलिए अपने साथ। अगर छाता नहीं लेके जा सकते हैं

तो बरसाती लेके चलिए अपने साथ। हाँ जी बिल्कुल, अब रेनकोट को जो है ना हिंदी में बरसाती भी कहते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि वो पूरा नीला जो छपरा होता है वो लेके चलने के लिए मैं कह रही हूँ नहीं, उसे लेके चलने के लिए नहीं कह रही हूँ। और हल्की फुल्की बुहार होती है तो चलिए छतरी बड़ा आराम से काम कर देती है, लेकिन जब तेज़ हवाओं के साथ चलती है ना तो रेनकोट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखता है।

अपने अपने शूज़ ही पहने हुए हैं और आपके शूज़ गंदे भी नहीं होते हैं, बारिश के पानी में, गंदे पानी में वो गंदे भी नहीं होने वाले। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी इन बरसात में। और इसके साथ आप अपने पानी की बोतल ज़रूर रखिए, क्योंकि पानी जो है ना, अगर आप बरसात में बाहर कहीं पे भी पानी पीते हैं वो गंदा अगर हो जाए तो इस मौसम में बीमार पड़ना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और बीमार मत पड़िएगा, वरना हमारा क्या होगा, आप सोचिए ज़रा। फिलहाल आप सबके लिए एक प्यारा सा गाना मैं लेकर आई हूँ और उसके बाद बताऊँगी आपको। हाय आम, हाँ देखिए देखिए, अरे आंटी के चेहरे पे देखिए कैसी स्माइल आई है सिर्फ आम का नाम लेते ही। हाँ, आम महोत्सव, आम महोत्सव के बारे में बताने वाली हूँ आंटी, इस गाने के उस पार ज़रा ध्यान से सुनना। बिल्कुल, अब देखिए, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे उस आम महोत्सव में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें। Stay tuned to FM Rainbow 102.6 MHz. आपने ट्यून इन किया हुआ है दिल्ली NCR में और उसके अलावा अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर आप सुन रहे हैं हमें, हमसे जुड़े हुए हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू।

वेलकम बैक है जी, वेलकम बैक है आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है एफएम रेनबो पर, जहां प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, मस मलंग आरजे श्वेता के साथ। आइए आइए आइए, आम खाइए, आम आमों की बहुत सारी वैरायटी देखिए। अरे आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया श्रोता को, भाई मेरा तो फेवरेट है आम। और जितने भी मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिली ना, सब ज़्यादातर लोगों के आम जो है वो फेवरेट फल है। और आंटी थैंक यू सो मच, देखिए कैसे इंतज़ार से एकदम बैठी हैं, आंखों में चमक है कि आम के बारे में मैं बताऊंगी, आम महोत्सव के बारे में बताने वाली हूं। तो बस आपको 400 से ज़्यादा वैरायटी, दिल्ली वालों आम का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो शुरू हो गया है। 400 से ज़्यादा वैरायटी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो 35वां मैंगो फेस्टिवल 2026 शुरू हो गया है, जहां सिर्फ सिर्फ सिर्फ 100 रुपये में जाके आप 400 से ज़्यादा किस्मों के आमों का असीमित स्वाद ले सकते हैं। और इसके अलावा आप यहां पे बहुत सारे जो है एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं, अचार, चटनी, कैंडी। और सीधे किसानों से आप आम खरीदने का आपको मौका है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, किड जोन है, मज़ेदार बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होने वाली हैं। तो जनाब दिल्ली और एनसीआर के आम प्रेमियों, आप लोगों के लिए ये खुशखबरी लेकर आ गई है मस्त मलंग आरजे श्वेता। और राजधानी में सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, वो महोत्सव अब शुरू हो गया है। और एक बार पहले से भी बहुत बड़े रूप में आयोजित होगा। स्वाद, सुगंध और रंगों से भरपूर ये उत्सव आम के दीवानों को 400 से भी ज़्यादा किस्मों के आमों का अनुभव करने को मौका मिलेगा। चलिए बता देती हूँ, मैंगो फेस्टिवल सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, इसमें आप वहाँ अगर आप जाएंगे तो लाइव आपको कितने सारे प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे, लोक नृत्य मिलेगा, लोक गीतों का मंच आप देख पाएंगे। परिवार के साथ आने वालों के लिए तो भाई खास किड जोन है, फैमिली एक्टिविटीज़ होने वाली है। और इन यादों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट तो वहाँ पर तैयार है। और क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है बताऊंगी, क्योंकि हमारी तो जिंदगी ना आम तुम्हार, तुम तक ही है बस, तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक, तुम तक।

हम सब की जो ये तैयारी है ना आम महोत्सव की, यहाँ तक पहुँच जाती है। और साथ ही आपको बता दो, ये जो आम महोत्सव होने वाला है इसमें आप लाइव शोज देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लोक नृत्य रहेगा, यहाँ पे सांस्कृतिक मंच मिलेगा बहुत से लोगों को। इसके अलावा पारिवारिक मनोरंजन, फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए खास जोन बनाया गया है, जहाँ पर किड जोन है, फैमिली जोन है, आप फैमिजिन और फैमिली एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैंगो फेस्टिवल है तो बस सिर्फ मैंगो से रिलेटेड आपकी सारी बातें होने वाली हैं। मज़ेदार क्विज होने वाली है, प्रतियोगिताएं होने वाली है, आम खाने की स्पर्धा। हाँ जी, आप आपको जो है ना, अगर आम के शौकीन हैं तो देखिए कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा आम खा सकते हैं, वहाँ पर ये भी प्रतियोगिता होती है। इस बार देखते हैं कि वो 3 मिनट की है, 2 मिनट की है या 1 मिनट की है। हाँ, 3 मिनट में 3 किलो आम क्या खा सकते हैं आप? अगर खा सकते हैं तो ज़रा पहुँच जाइए वहाँ पर। मज़ेदार क्विज होने वाली है, फिर आपको इनाम भी मिलेंगे और सेल्फी पॉइंट में सेल्फी की अपनी फ़ोटो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी फ़ोटो जब लगाएं, अगर

मेरे प्रोग्राम को सुन के वहां जा रहे हैं तो मस्त मलंग आरजे श्वेता को टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आप सोच रहे होंगे ये कब है, कहाँ है, क्या टाइम है, श्वेता जल्दी से बता दो। तो ठीक है भाई, ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाती हूँ। और ये जो बावरा सा मन है, ये जो झूमता हुआ जा रहा है आम महोत्सव की तरफ, तो चले जाइएगा 3 तारीख से लेके 5 जुलाई तक, 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई यानी कल से लेके 5 जुलाई तक ये होने वाला है। 12 बजे से रात 9 बजे तक होगा। कहाँ पर होगा? दिल्ली हाट जनकपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली हाट जनकपुरी, हाँ जी जनकपुरी वाले दिल्ली हाट में होने वाला है। समय पर पहुँचिएगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

और हम भी आपका साथ निभाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसके साथ ही आपको बता देती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी खबर। अगर पहले से ही पता चल जाए कि हम कॉलेज जा रहे हैं और कब छुट्टी होने वाली है, कब हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कितना अच्छा होगा। अच्छा होगा ना? तो बता देती हूँ आपको एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहला, तीसरा और पांचवा और सेवन्थ सेमेस्टर जो है वो

अपनी नियमित कक्षाएं चलाएगा, यानी कि 28 जुलाई से लेकर ये शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सेमेस्टरों के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक विंटर आपका अवकाश रहने वाला है। उसके बाद 26 अक्टूबर से लेकर दोबारा से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 20 नवंबर से लेकर आपकी तैयारी जो है वो छुट्टियां तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा आपकी आ जाएंगे एग्ज़ाम्स, उनकी हो जाएंगी तैयारियां शुरू। तो नवंबर का जो महीना है, जब सर्दियां आती हैं तो कैसा लगता है ना, मन करता है कि बस कंबल में बैठे रहे, ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई ना करें, लेकिन करनी तो पड़ेगी। इसीलिए उसी टाइम से अपनी पढ़ाइयाँ शुरू कर देना परीक्षाओं के लिए। और उसके बाद 4 दिसंबर से आपकी हो जाएंगी परीक्षाएं शुरू, हाँ, और फिर 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हो जाएंगी छुट्टियां, ये फिर 3 जून से, और मतलब आगे आगे इसी तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। 3 जून यानी अभी जो 3 जून शुरू हो चुका है, उस 20 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका दूसरा, फोर्थ, 6 और 8वां सेमेस्टर जो है उसकी क्लासेस हो जाएंगी। फिलहाल मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि हमारी जो अगली आरजी है वो आ चुकी है और मुझे दिख रही है कि अरे जाए तब तो मैं बैठूं इस हॉट सीट पर। तो बस यहीं पे मस्त मिलेंगे आरजी श्वेता को, दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलूंगी कुछ नई कहानियों के साथ, बातों के साथ। और अपने चेहरे पर रखिएगा अपनी स्माइल, न चैनल से देख के कौन मुस्कुराना सीख जाए, ध्यान रखिएगा अपना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध बेहद विशेष हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश की रिफाइनिंग क्षमता को अगले 6 से 12 महीनों में 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रेलवे ने जून में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की। अमृत भारत रेल सेवाओं की संख्या बढ़कर 72 और वंदे भारत सेवाएं 164 हुईं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लव कुश मिश्रा की एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली में दस्तक देते हुए उत्तरी और पश्चिम राज्यों में आगे बढ़ा। और खेलों में फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ये थे अब तक के समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैसेज मसाला मिक्स। अब इस प्रोग्राम में तो आपसे मुलाकात किए मुझे बहुत वक्त हो गया है, तो यकीन मानिए अगर आपको मेरी आवाज़ सुनकर अभी थोड़ी बहुत खुशी हुई है इस प्रोग्राम में, तो आपसे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे इस प्रोग्राम में आपसे जुड़कर हुई है, क्योंकि आपके मैसेजेस का ये जो सिलसिला यहाँ शुरू होगा उसके साथ बंद कर यकीन मानिए मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो बातें शुरू होंगी, बिल्कुल शुरू होंगी, किस बारे में होंगी बताऊंगी, ज़रा सा सब्र रखिए। और वैसे भी अक्सर कहती हूँ ना मैं आपसे कि बातें जब अपनों से की जाती हैं तो बातें दिल से की जाती हैं, और जब दिल से बातें होती हैं तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, क्योंकि तब उन बातों में एहसास होता है, फीलिंग्स होती हैं, और हम तो दिल से जुड़े ही हुए हैं, दिल का रिश्ता जो है हमारा। तो चलिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं शो की शुरुआत। गाने के उस पार आपको बताऊंगी किस बारे में आज हम यहाँ करेंगे बातें।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ मुझ तक पहुँच भी चुके हैं और बिल्कुल शामिल करूँगी मैं आप सभी के मैसेजेस, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बता दूँ कि आखिर किस बारे में यहाँ आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, पेरेंट्स शायद वो सबसे ज़रूरी इंसान होते हैं जो हमारा अच्छा सोचते हैं, जो सोचते हैं कि उनसे भी ज़्यादा खुशियाँ हमें मिले, उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हम हों। दुनिया को उन्होंने देख रखा होता है, इसीलिए दुनिया की हर परेशानी से वो हमें महफूज रखना चाहते हैं। पर जब हम छोटे होते हैं या इवन मैं कहूँगी अडल्ट एज तक नहीं भी पहुँचे होते हैं, टीन एज में होते हैं या कई बार अडल्ट होने के बाद भी, उनकी बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती। हम नाराज़ होने लगते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, आप मना क्यों कर रहे हो, आप टोक क्यों रहे हो इस चीज़ के लिए, या इसमें मैंने क्या गलत किया जो आप ऐसे कह रहे हो। पर वक्त के साथ जैसे जैसे हम दुनिया देखते हैं, हमें अनुभव होते हैं, वैसे वैसे हमें एहसास होता है कि मम्मी पापा की जो सीख होती है ना, वो सबसे ज़्यादा काम आती है हमारे लिए ज़िंदगी में। तो चलिए, यही आपको आज मुझे बताना है कि आपके मम्मी पापा की कौन सी वो सीख है जो उन्होंने जब आपको दी तो भले ही आपको समझ में ना आई हो, आप नाराज़ हो गए हो, या फिर आपको लगा हो कि ये तो बहुत मामूली सी बात है या बेकार की बात है इवन, पर बाद में आपको बड़े होने के बाद या किसी भी एक्सपीरियंस के बाद समझ आया कि ये सीख कितने काम की थी, या फिर उस सीख ने आपकी ज़िंदगी के किसी पड़ाव पर कैसे मदद की। यही आपको मुझे बताना है और बहुत जल्दी से बताना है, क्योंकि आपके मैसेजेस का यहाँ पे मैं कर रही हूँ इंतज़ार। तो जल्दी से कर दीजिए शुरुआत मैसेजेस करने की, शामिल करूँगी मैसेजेस गाने के उस पार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका है आपके साथ। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। बात मैंने की कि बताइए मुझे वो कौन सी सीख है जो बचपन में आपको आपके मम्मी पापा ने दी थी, तब शायद आपको कुछ खास नहीं लगी थी, बेकार लगी थी, या फिर तब आपने उस पर गौर नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ आपको समझ में आया कि वो लाइफ का कितना बड़ा लेसन था। मैसेज मेरे पास आया है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। ये लिख रहे हैं कि हमारा तो यही कहना है कि माता पिता की सीख और स्कूल में गुरुओं की शिक्षा आपको सही दिशा की ओर ले जाती है और जीवन बदल देती है। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही। वाकई में गुरुओं का ज्ञान, माता पिता की सीख अगर हम समझ लें तो ज़िंदगी अच्छे मोड़ पर, अच्छे रास्तों पर, अच्छी दिशा में पहुंचने लगती है। राकेश ठाकुर का मैसेज आया है मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली से। लिख रहे हैं मेरे मम्मी पापा सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने को कहते थे। उनका कहना था एक बार सही शिक्षा मिल जाए और नौकरी करने लगोगे तो दुनिया का हर एक शौक पूरा कर सकते हो। वो बात सच साबित हुई। सच में कभी गलत करने से मना किया था। मैं आपकी आगे की बात नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बात ये ज़रूर समझ गई कि आपके मम्मी पापा पढ़ाई पर फोकस करने को कहते थे। तो बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, और सही बात है कि जब जिस वक्त हम स्टूडेंट होते हैं, अगर उस वक्त हम बाकी चीज़ों में, यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे या स्पोर्ट्स या किसी चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, खेल में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, तो आगे चलकर करियर बनाने में और ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होगी। अनिल शर्मा का मैसेज आया है सरिता विहार से। ये लिख रहे हैं मुझे पिताजी ने बताया था ईमानदारी की राह मंजिल पर पहुंचाती है, बड़ों का आदर करना ज़रूरी है, जिनसे मिली दुआएं आगे बढ़ने में काम करती हैं, और सबसे बड़ी सीख कर्ज से दूर रहो, जितने पैसे जेब में हैं उतने में काम चलाओ। आज मैं खुद वरिष्ठ और पुरानी उनकी सीख से खुशहाल हूँ। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है अक्सर पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि बचत कितनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर आपके पास जितना भी आपके रिसोर्सेज हैं या जितनी भी आपकी इनकम है, आपको उसी में काम चलाना चाहिए। किसी से बोरो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना या शौक पूरे करना गलत है। फिलहाल एक और ट्रैक आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक, एंजॉय कीजिए।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपके साथ मैं हूं दीपिका। प्रोग्राम है मैसेज मसाला में। एक बातें चल रही हैं कि वो कौन सी सीख है मम्मी पापा की जो बचपन में तो अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब जिंदगी ने सिखाया, अपने जाल में उलझाया, उन रास्तों पर भी आगे बढ़ाया जो ज़रा मुश्किल थे, तब वो सीख समझ में आई। तो बहुत सारे और मैसेजेस यहाँ मुझ तक पहुँच चुके हैं, चलिए उन्हें शामिल मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। मैसेज मेरे पास आया है, शुभ संध्या आरजे मुक्ति जी, आपने क्या विषय दिया है ज़रा बता दीजिए। हीरा मणि वर्मा, इन्होंने भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज किया है। एक तो देखिए मुक्ति नहीं यहाँ पर आपके साथ दीपिका है, और विषय मैंने अभी अभी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। माता पिता की कोई वो सीख जो बचपन में तो समझ नहीं आई थी या कुछ खास नहीं लगी थी, पर अब बिल्कुल समझ आती है। पंकज का मैसेज आया है अमरावती महाराष्ट्र से, ये लिख रहे हैं, मुझे मेरे माता पिता की सीख आज भी याद है। जब मैं बचपन में स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई के नाम पर हमेशा डरता था, तो मेरी माँ मुझे समझाती थी कि स्कूल जाना और पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है और वो ज़िंदगी में हमेशा काम आती है। उसके बाद स्कूल में मन लगने लगा और आज मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है यहाँ पर। और मेरे पास जो अगला मैसेज आया है, ये मैसेज राकेश बोरा का है, बुराड़ी दिल्ली से। ये लिख रहे हैं, मेरे पापा कहा करते थे कि लाइफ में आप इंसान अच्छा बनो, लोग अपने आप को अच्छा कहने लोग आप अपने आप आपको अच्छा कहने लगते हैं। बुरों की बुराई तो सब करते हैं, लेकिन अच्छे की अच्छाई कोई नहीं करता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अच्छा या बुरा इंसान बनना काफ़ी हद तक अपने हाथ में होता है, और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी और के कहने से आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अगर मुझे पता है मैं अच्छे इंसान हूँ, तो बस मैं अच्छी चीज़ें कर रही हूँ तो मैं अच्छी इंसान हूँ। किसी दोस्त ने और मुझे मैसेज किया है, चलिए पढ़ते हैं किन्होंने किया है। कैलाश शर्मा ने मैसेज किया है, गुरुग्राम से लिख रहे हैं, मम्मी पापा ने बचपन में ही सिखाया कि कड़ी मेहनत करना है, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना है और लालच में कोई गलत काम नहीं करना। उन्हीं की राह पर चलते हुए आज एक सफल करियर के बाद मेरा रिटायरमेंट हुआ और मम्मी पापा की सीख मुझे हमेशा याद रही। बिल्कुल ठीक आपने बात कही, सक्सेस का, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग गलत करके या फिर शॉर्टकट अपना के आगे निकल जा रहे हैं, तो हमारे मन में भी ये ख्याल ज़रूर आता है, पर तब मम्मी पापा की ऐसी सीख ही काम आती है। और कुछ मैसेजेस यहाँ पर मेरे पास पहुँचे हैं। मैसेज आया है रंजीत कुमार मंडल का, सिकटी अररिया बिहार से, लिख रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे स्वच्छता की प्रेरणा दी और पिता ने मेहनत करने की प्रेरणा दी, जो आज बेहतर साबित हो रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगला मैसेज आया है मेरे पास, प्रेमचंद प्रेमिका धामपुर बिजनौर से लिख रहे हैं, बचपन में माता पिता ने सीख दी थी कि ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है, और उनकी इस सिखाई हुई सीख पर मैं आज भी चलता हूं, अपनी दुकान पर बहुत मेहनत करता हूं और जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए मैंने कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल, मेहनत तो हमें ज़िंदगी में करनी ही चाहिए, मेहनत ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। वो और बात है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मेहनत करने के बावजूद हमें तुरंत सक्सेस ना मिले या उतने वक्त में ना मिले जितने में हमने सोचा हो, पर मेहनत कर रहे हैं, आपके जो इंटेंशन है वो प्योर है, एफर्ट्स सही हैं, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे देर से ही सही।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 आपके साथ मैं हूँ दीपिका और यहाँ बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लिसनर्स जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, भेरू लाल वाकतरिया धाकड़ ने मैसेज किया है, उज्जैन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। हमारे माता पिता ने बचपन से अच्छे और बुरे के विषय में सीख दी है, घर से बाहर जाते वक्त यात्रा में सावधानी बरतने और सतर्क रहने की शिक्षा दी है। बिल्कुल ठीक बात है, कई बार जब हम घर से बाहर निकलते थे जब उतनी समझ नहीं थी और मम्मी पापा कहते थे किसी से बात नहीं करना, कोई कुछ दे तो खाना नहीं, तो ऐसा लगता था कि इसमें क्या है या ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, पर अब धीरे धीरे समझ आता है कि वो कितना सही कहते थे। अगला मैसेज जो आया है मेरे पास, राजकुमार के संतानी का मैसेज आया है महाराष्ट्र से। इन्होंने गुड इवनिंग लिखा है लेकिन हमारे विषय के बारे में कुछ भी बात इन्होंने नहीं की है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है वो मैसेज किन्होंने किया है, ये मैसेज किया है हीरामणि वर्मा ने भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये लिख रहे हैं, जब हम छोटे थे तो बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी काम ईमानदारी से करना भले ही मुश्किल हो, पर समाज में सभी का आदर करने के लिए माँ ने सिखाया था। आज सभी हम सभी भाई बहन माँ बाबूजी की बताई हुई बातों को जीवन में उतारते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत बड़ी ये बात है। मुझे लगता है कि कोई भी जो बच्चा है, हम अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो कर सकते हैं ना, वो यही कर सकते हैं कि उनकी बताई हुई चीज़ों को हम करें, उनके बताए रास्ते पर चलें और वो अपने आप बहुत खुश होंगे। एक और मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है वो किन्होंने मुझे किया है, ये

मैसेज मुझे किया है प्रियंका वर्मा ने, इन्होंने मुझे मैसेज किया है कहाँ से ये लिखकर नहीं भेजा ये, लेकिन ये लिख रही हैं कि मेरे पापा बचपन में अक्सर मुझसे कहा करते थे कि हमें जो भी बात दिल में हो वो बोल देनी चाहिए, दिल की बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होता है। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, अगर हम कुछ फील कर रहे हैं तो उसे ओपनली बोल देना बहुत ज़रूरी है।

कर लेते हैं। तारा चंद सोनी का मैसेज आया राजस्थान से, लिख रहे हैं मेरे पापा बचपन में कहते थे सुबह 5 बजे जागना और रात में जल्दी सोना, क्योंकि सुबह की हवा जो है वो दवा की तरह काम करती है। बिल्कुल ठीक बात ये आपने कही है, सुबह की जो हवा है वो सच में दवा की तरह काम करती है। ये सीख अक्सर जो है वो पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, लेकिन हम जो है वो कई बार इसे फॉलो नहीं कर पाते, पर करना चाहिए। कांट से मोहम्मद फुरकान का मैसेज आया, लिख रहे हैं मैम टॉपिक बहुत अच्छा है, किसी के भी माता पिता जो होते हैं वो कभी अपनी औलाद को गलत सीख नहीं देते, चाहे वो औलाद कैसी भी हो। हमारा इन्होंने क्या लिखा है कि हमारा जो भी इन्होंने काम है वो लिखकर भेजा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं जो हूँ वो इस काम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मैं उस वक्त नहीं समझ पा रहा था। इन्होंने लिखा है कि मेरे पापा ने मुझे कपड़े की शॉप करवाई, मैं चाहता था कॉस्मेटिक शॉप करना, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं कपड़े की शॉप करो, और मैंने अपने पापा की बात मानी और आज उनकी बात मानकर मैं बहुत खुश हूँ। और यकीन कीजिए आज कांट में सबसे टॉप की शॉप मेरी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत अच्छी बात है ये कि अपने पेरेंट्स की बताई बात पर आप चल रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। अगला मैसेज आया है, किन्होंने मैसेज किया है, महेश बोहरा ने मैसेज किया है अजमेर राजस्थान से, लिख रहे हैं मेरे माता पिता हमेशा सीख देते हैं कि जहाँ भी रहो अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो और हर क्षेत्र में अपनी साख ऐसी बनाओ कि दुनिया के बड़े से बड़े मेडल फीके पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है, अपना व्यवहार हमें ज़रूर सभी के साथ अच्छा रखना चाहिए, और ये एक ऐसी सीख है जिससे मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए। आप चाहे किसी भी फेस से गुजर रहे हो लाइफ के, आपके आसपास जो इंसान है वो आपसे बड़ा हो छोटा हो, कद में या फिर उम्र में पोस्ट में किसी भी चीज़ में आपके बराबर हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको व्यवहार सबसे बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में कौन किस परेशानी से गुजर रहा है हमें नहीं पता। इसीलिए एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, मुस्कुरा के सबसे मिल सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो आपके साथ आपकी दोस्त दीपिका, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में अगर आप अभी जुड़े हैं तो बता दूं, बातें हो रही हैं कि वो कौन सी सीख है पेरेंट्स की, हमारे मम्मी पापा की, जो बचपन में हमें समझ ना आई हो, अच्छी ना लगी हो, हमने गुस्सा कर दिया हो या फिर बिल्कुल ही बेकार लगी हो, लेकिन बड़े होने के बाद समझ में आया कि वो सीख कितनी काम की थी। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज डॉली ने किया है, लिख रही हैं बहुत अच्छे गाने प्ले कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा है, मेरी दादी माँ की सीख थी कि पहनने में, यानी मैं जितना समझ पा रही हूँ शायद ये कपड़े पहनने का जिक्र कर रही हैं, कि हम कई बार दूसरों की होड़ करके अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं, अपनी बजट से भी ज़्यादा कपड़े खरीद लेते हैं या अपने बजट से भी ज़्यादा रेंज के कपड़े खरीद लेते हैं, पर इनकी दादी का ऐसा कहना था कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए और कपड़े पहनने में, खरीदने में किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बात सिर्फ कपड़े पहनने या खरीदने तक सीमित नहीं है, हमें ज़िंदगी में किसी की भी होड़, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है जितना है आगे बढ़ने की कोशिश बेशक करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संतुष्ट रहकर ऐसा सोच लीजिए कि इससे आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल बढ़ सकते हैं आप, आसमां में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर बस आपको तबीयत से उछालना है, लेकिन हाँ, किसी की होड़ नहीं करनी है, अपनी मेहनत करनी है और उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी ना, यकीन मानिए उसका स्वाद ही अलग होता है। एक और मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज किया है मुझे, नाम इन्होंने अपना लिखकर नहीं भेजा है, पर मैसेज इन्होंने किया है कि हमारे माता पिता ने एक बात सिखाई है कि कुछ भी हो जाए सच बोलना। बिल्कुल, सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है और ये बात बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सरफराज आलम ने लिखा है, दर्शना बाजार अररिया बिहार से, कि माता पिता की डांट उस वक्त सजा लगती थी, आज समझ आता है कि वो डांट नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की दुआ थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये बेहतर भविष्य की दुआ होती है माता पिता की डांट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में

कोई गलती ना करें। अगला मैसेज आया है संजय श्रीवास्तव का, एमपी से लिख रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर लगे कि कोई बीमारी हमें घेर रही है, किसी बीमारी के छोटे से भी लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर खान पान पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। आज का टॉपिक रिपीट कर दीजिए मैम। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से मैसेज किया है कि मैं सुनने में लेट हो गई हूँ। चलिए अंशी, आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ इस बारे में कि मम्मी पापा की वो कौन सी सीख है जो बचपन में अच्छी नहीं लगती थी, नाराज़ हो जाते थे, लेकिन अब लगता है कि बहुत ही काम की बात उन्होंने तब हमें बताई थी, और अब तो उसे फॉलो हम करते ही करते हैं। इस खूबसूरत से ट्रैक को फिलहाल आप एंजॉय कीजिए दीपिका के साथ, इस साथ को बनाए रखिए।

दीपिका है आपके साथ, प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। अंशी शर्मा का मैसेज आया हस्तिनापुर मेरठ से, लिख रही हैं, मैम बहुत टाइम बाद आपको इस शो में सुन रही हूँ। जी हाँ, मैं सच में इस शो में बहुत टाइम बाद ही आप सबसे जुड़ रही हूँ। आगे इन्होंने लिखा है, मेरे पापा ने बचपन में एक बात सिखाई थी कि किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहिए, अपने काम से काम रखें आसपास के लोगों से। तब वो बात ख़राब लगती थी, लेकिन आज ज़माने को देखकर लगता है कि पापा हमेशा सही बोलते हैं। हाँ, बात ही सही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेलजोल नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ, आप किससे मेलजोल रख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं, और क्या उस इंसान से बात करना सही है या नहीं, इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज के वक्त में रिश्तों में भी जुड़ने से पहले जाँचना परखना बहुत ज़रूरी है। अगला मैसेज आया है, किसका मैसेज ये मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज गुड इवनिंग लिखकर भेजा है, पर आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। आगे आया है, दीपिका मैम को प्यार भरा आदाब। इन्होंने लिखा है कि मेरे माँ बाप और बड़ों ने सिर्फ इतना ही सिखाया कि जो मन को भाए वो खाएं, जो तन को सजे वो पहने, और जो जग को अच्छा लगे वो बोले। आदिल कमर का गुन्नौर से मैसेज आया है मेरे पास ये। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, प्रवीण चौहान ने लिखा है, मध्य प्रदेश से, लिख रहे हैं, बचपन में मम्मी पापा बोलते थे पढ़ाई करो, अब समझ आता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, बात एकदम सही है। देहरादून से आलोक पवार और मिनी का मैसेज आया है, लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन। मेरे पापा की बचपन में कई बातों को लेकर टोका टोकी करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, आज बड़े होने पर मालूम चलता है कि वो जो भी बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे। हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, बचपन में पेरेंट्स हमें कई बातों के लिए रोकते टोकते हैं, और तब हमें ऐसा लगता है कि वो हमें ज़बरदस्ती हम पर बंदिश लगा रहे हैं, पर वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और मैसेजेस जो मुझ तक पहुँचे हैं, ये मैसेज मुझे किया है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ने, लिख रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी पसंद आ रहे हैं, शुक्रिया। एक और मैसेज जो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, ये मैसेज किया है मुझे अशोक विहार से भुवनेश ले, लिख रहे हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया है, और इसीलिए आज मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, शांति नगर सोनीपत से अनीता मुखी, सुदर्शन मुखी और सिमरन मुखी ने मैसेज किया है, लिख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है ऑनेस्ट रहना, हम्बल रहना और हेल्पफुल रहना। बिल्कुल ठीक बात है, ये तीनों ही चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार जो चीज़ें हमें पेरेंट्स ने सिखाई होती हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आसपास जो हमारे लोग होते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। नोएडा एक्सटेंशन से श्याम सुंदर का मैसेज आया है, साथ ही साथ सुनील और रीना ने भी ये मैसेज किया है कि मम्मी पापा की सबसे अच्छी सीख होती है कि वो हमें मेहनत करना, मुश्किलों में हिम्मत ना हारना और परिवार को साथ लेकर चलना सिखाते हैं और सही गलत का फ़र्क बताते हैं। जी हाँ, मुश्किलों में हिम्मत ना हारना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, और कई बार हम हिम्मत हारने लगते हैं, हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम हार गए हैं या फिर अब शायद ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तब मम्मी पापा की सीख ही काम आती है। एक और मैसेज पहुंचा है मुझ तक, ये मैसेज मुझे किन्होंने किया है, ये मैसेज मुझे किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने, ये लिख रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है। नहीं, मैं जुड़ी तो हूँ आपसे बीच में, लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम में बहुत वक्त बाद जुड़ी हूँ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं और अभी इस प्रोग्राम में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, इस प्रोग्राम के लिए मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन 8 बजे से दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी मैं लेकर के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और पार्टी ट्रैक्स के साथ। आपको थिरकने झूमने पर कर दूंगी बिल्कुल मजबूर। तो इस प्रोग्राम के लिए आप दीजिए दीपिका को इजाज़त। आप सभी के मैसेजेस यहाँ पर मैंने शामिल करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर किसी का मैसेज मिस हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अभी के लिए दीपिका आपसे ले रही है इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त।

आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध बेहद विशेष हैं। भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश की रिफाइनिंग क्षमता को अगले 6 से 12 महीनों में 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों के लिए बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा गारंटी बांड की सुविधा शुरू की। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रेलवे ने जून में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की। अमृत भारत रेल सेवाओं की संख्या बढ़कर 72 और वंदे भारत सेवाएं 164 हुई। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली में दस्तक देते हुए उत्तरी और पश्चिम राज्यों में आगे बढ़ा। और खेलों में फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड द टाइम बाय 2 o'clock इज 7:02 एंड 27 सेकंड्स।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना 24।

घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक योर टू डी टू द प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज विद मी सुहासनी। ऑफ कोर्स द टाइम इज रनिंग अवे बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर लाइफ चेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज, शेड्यूल्स बिकम बिजियर एंड आवर प्रायोरिटीज शिफ्ट, बट समहाउ डीप इनसाइड द क्यूरियस प्लेफुल चाइल्ड still exist, and the child who believed anything was possible, who loved without hesitation.

एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलकर दुनिया को लाभ पहुंचा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश की रिफाइनिंग क्षमता को अगले 6 से 12 महीनों में 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों के लिए बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा गारंटी बाट की सुविधा शुरू की। भारतीय रेलवे ने जून में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की। अमृत भारत रेल सेवाओं की संख्या बढ़कर 72 और वंदे भारत सेवाएं 164 हुईं। डिजिटल इंडिया के 11 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में 26 करोड़ से अधिक इपार आईडी जारी किए गए। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। सोल में वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। लगातार वर्षा के कारण उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी करना फिलहाल बंद किया। और खेलों में फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूं मैं दीपिका। इस बार मैं लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। और आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में होता है वो जो आपको नाचने पर थिरकने पर मजबूर कर देता है। मैं बात कर रही हूँ उन पार्टी ट्रैक्स की जो हम यहाँ पर प्ले करते हैं और आप झूमने पर थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करना भी तो ज़रूरी है ना।

जी हाँ, 90s का तो ये सुपर हिट गाना है जिसे सुनते ही पैर थिरकने ही लगते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, जहां मैं प्ले कर रही हूँ एक से बढ़कर एक वो ट्रैक्स जिन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, थिरकना है, झूमना है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। 8:29 और पूरे 29 सेकंड हो चुके हैं। राइट फ्रॉम द स्टूडियो क्लॉक बना हुआ है आपका मेरा ये साथ जो 9 बजे तक रहने वाला है, बिल्कुल बरकरार।

सैटरडे संडे का इंतजार किसको नहीं रहता। आप देखिए, जब वीक फुल स्पीड से भाग रहा होता है और हम उसके साथ साथ भाग रहे होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, तो बस दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि ये वीकेंड जल्दी से दस्तक दे और हम थोड़ा रिलैक्स कर पाएँ, थोड़ी पार्टी कर पाएँ, थोड़ा इंजॉय कर पाएँ और थोड़ा खुद को आराम दे पाए। इसलिए मुझे लगता है वीकेंड का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आप देखिए, जैसे आज थर्सडे है, परसों, जी हाँ, बस परसों तक का इंतजार करना है और वीकेंड आ जाएगा। कई बार जब हम वीकेंड का इंतजार करते हैं तो ऐसा लगता है ना, कितनी दूर है वीकेंड, कितने दिन हो गए, आ ही नहीं रहा है। और जब आ जाता है तो लगता है अभी तो सैटरडे शुरू हुआ था और अभी संडे रात भी आ गई, मंडे से फिर ऑफिस। होता है ना आपके साथ अक्सर ऐसा? आकाशवाणी FM रेनबो पर दीपिका आपके साथ है। यहाँ पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और बहुत सारे पार्टी ट्रैक्स यहाँ पर लगातार मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इन्हें सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं और फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं।

जी सब फर्स्ट क्लास है और सब फर्स्ट क्लास ही रहे इसी उम्मीद के साथ अब दीपिका लेगी आपसे इजाजत। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं, या यूं कहूं दीपिका के साथ थे, क्योंकि अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का इस प्रोग्राम में, यानी कि म्यूजिक मस्ती में। 9 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी हिना, लेकर आएंगी प्रोग्राम आपकी याद आती रही। तो अभी दीपिका को दीजिए इजाजत, जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। तो बस आपको भी कहीं नहीं जाना है, आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ आपको बने रहना है। और फिलहाल के लिए दीपिका को इजाजत दे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: तू भी तन्हा है बिछड़कर हमसे, हम भी ऐ दोस्त अकेले हैं बहुत। तू भी तन्हा है बिछड़कर हमसे, हम भी ऐ दोस्त अकेले हैं बहुत। और तो कुछ नहीं अपने बस में, और तो कुछ नहीं अपने बस में, याद करके तुझे रोते हैं बहुत। यादों का सिलसिला शुरू करते हैं, आइए दोस्तों इस रोमांटिक ट्रैक के साथ। प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर हिना मौज हाजिर है। मेरा आदाब कबूल कीजिए।

9:08 26 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी बात या हम इस बात का एहसास करते हैं कि जिंदगी में गाय

चाहे बगाहे रोज़मर्रा किसी न किसी से हमें मिलना ही होता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी सिलसिले के चलते और ज़िंदगी में किसी न किसी बात को लेकर आप कहीं ना कहीं किसी से मिलते ज़रूर हैं। सुबह से शाम तक बहुत लोग आपसे टकराते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी दोस्ती भी हो जाती है, और बिलवक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके चलते कुछ दिन तक आपके रابطे भी कायम रहते हैं। लेकिन कुछ वक्त गुज़र जाने के बाद वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो आपको एहसास होता है कि कहीं ये वो इंसान तो नहीं है जिसे ज़िंदगी में ठहरना था, या आगे बढ़कर आपको ये लगता है कि आप पीछे गुज़रे लम्हात को दोबारा जीना चाहते हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के जाने के बाद भी कभी नहीं जाते, उनकी मौजूदगी भले ही हमारे साथ ना हो लेकिन उनकी यादें हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाती हैं। और ऐसी यादें जिनको भुलाना बेइंतहा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा कायम रहेंगी। हर सांस के साथ वक्त गुज़रने के बावजूद भी ये कभी भी ओझल नहीं होंगी, बोझल नहीं होंगी। ऐसी यादें हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान को लेकर, किसी न किसी शख्सियत को लेकर ज़रूर आती हैं।

9:15 हिना मौज के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। दोस्तों, बात चल रही थी मोहब्बत की, मोहब्बत में मिलने वाले उन लोगों की जो आपकी जिंदगी में ठहर जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ साथ निभाने का नाम तो नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो एक ऐसा एहसास है जो इंसान के दिल पर अपनी ऐसी छाप छोड़ जाता है जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाता। वो कहते हैं ना कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौकी नज़र अच्छा लगा, गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौकी नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा।

दोस्तों जहाँ से गुजरता कौन है इश्क हो जाता है करता कौन है। जी हाँ दोस्तों, किसी एक इंसान की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी फिक्र, ये सब हमारी यादों में ऐसे बस जाता है जैसे किसी किताब के खूबसूरत पन्ने। वक्त गुजरता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं और वो आपके दिल में यूं पैवस्त हो जाती हैं मानो आपने अभी उनसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा हो। ऐसे खूबसूरत यादें हर इंसान की ज़िंदगी में बने, इसी बात की उम्मीद और ख्वाहिश लेकर हम आते हैं इस प्रोग्राम को करने, जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और ये सुनते हैं आप आकाशवाणी FM रेनबो पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप प्रोग्राम आपकी याद आती रही हिना मौज के साथ। और ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत पड़ाव पर है दोस्तों, बात चल रही है मोहब्बत की और मोहब्बत में बनी हुई यादों की, क्योंकि यादें बहुत कीमती सरमाया होती हैं किसी भी इंसान का, और उनको अगर हम लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं कि ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े पक्के निशान देते हैं, आज पे कम ध्यान देते हैं, बहके बहके बयान देते हैं, उनको देखे हुई मुद्दत और अब हम अब भी जान देते हैं। ये खूबसूरत लाइनें ये एहसास दिलाती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके ज़रूर आते हैं, ऐसे वाकयात ज़रूर गुज़रते हैं कि किसी एक इंसान की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी फ़िक्र, ये सब हमारी यादों में बस जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। लेकिन दोस्तों कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि कोई ख़ास जगह, कोई पुराना गीत, बारिश की बूंदें या किसी खुशबू का एहसास हमें अचानक से उसी शख्स की याद दिला देता है, और तब महसूस होता है कि मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं रहती जनाब, वो हमारी यादों के हर कोने में पैवस्त होती है। और इस वक्त हमारा दिल क्या चाहता है? हमारा दिल ये चाहता है

जी हाँ, ऐसा ही होता है। मोहब्बत के इसी तरीके के आसार होते हैं जो इंसान को नज़र आ जाते हैं जब मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में आमद करती है। कहते हैं कि जिस सिमत भी देखूँ नज़र आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहाँ ये कोई तुमसा है कि तुम हो। जिस सिमत भी देखूँ नज़र आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहाँ ये कोई तुमसा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। दोस्तों कहते हैं मोहब्बत वो नहीं है कि जिसको मुट्ठी में कैद किया जाए, बंद किया जाए, बल्कि मोहब्बत वो है कि जिसकी खातिर खुद को भी आज़ाद कर दिया जाए। कभी भी किसी चीज़ के पीछे इस तरीके से नहीं भागना चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर भी पछताए। इंसान को हमेशा किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाते वक्त उसको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस पर आप आते ही इख्तियार जताने लग जाएंगे और मोहब्बत के बहुत सारे जो आयाम हैं उनसे ना गुज़रते हुए सीधा आखिरी पड़ाव पर पहुँचेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ऐसी मोहब्बतें ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन अगर आप बहुत

इत्मीनान से बहुत सुकून के साथ किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में उसकी राइट्स के साथ, उसकी खुशियों के साथ और उसके एहसास और जज्बात के साथ शामिल करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां भी आएंगी और आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से चल पाएंगे, गुजार पाएंगे। हमेशा यही दुआ रहती है हमारी कि आप किसी भी

0: ही बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: 9:45 18 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही और ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी FM रेनबो पर सुन रहे हैं।
1: मुझको पता है
0: दोस्तों, यादों के बारे में अगर बात की जाए तो यादों का इकट्ठा किया ये खूबसूरत सा सरमाया जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, कभी हमें मुस्कुराने की वजह देता है तो कभी आंखों को नम कर जाता है। लेकिन ये यादें हमें ये भी तो सिखाती हैं कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वो रिश्तों के ख़त्म होने के बाद भी इंसान के व्यक्तित्व का, सोच का और ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहती है। और ऐसी यादें जो आपकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखती हैं उनको हमेशा साथ रखना कौन नहीं चाहेगा।

9:55 अब आप सबको खुदा हाफिज कहने का इस प्रोग्राम में वक्त आ चला। लेकिन चलते चलते यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा शख्स है या रहा है जिसकी यादें आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान या आँखों में नमी ले आती हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपकी यादों का सबसे अनमोल सरमाया है। तो इसी खूबसूरत सी बात और इसी खूबसूरत से एहसास के साथ इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहूँगी, लेकिन रंगे महफिल में रहूँगी 11 से 12 आपके साथ। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

AIRFM रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तगाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था पहलगांव और बालटाल शिविरों में पहुंचा। उपराज्यपाल ने जम्मू से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। भारतीय रेलवे ने जून में माल ढुलाई और यात्री आवागमन में वृद्धि दर्ज की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में व्यापारिक पोत पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल किया। लगातार वर्षा के कारण उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी करना फिलहाल बंद किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। आकाशवाणी FM रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू ट्यून्ड टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज एंड द टाइम बाय 2 o'clock इज 10:03:03. वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम एंड दैट इज ऑल दैट जैज विद मी सुहासनी। सो लेट्स कंटिन्यू दिस अमेजिंग जर्नी विद मूव टू द ग्रूव बाय पैट मेथनी।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू द प्रोग्राम ऑल दैट जैज विद मी सुहासनी, एंड यू हर्ड पैट मैथनी हु इज एन अमेरिकन जैज गिटारिस्ट एंड कंपोजर। बट व्हाट एक्चुअली इज जैज एंड व्हाट पुट्स जैज इन मूड फॉर लव? Because jazz and love are definitely correlated, and jazz resonates deeply with emotion, particularly when it comes to love. And it's a genre that is built on improvisation, raw feeling, and connections. And sometimes when the sultry notes play, when the room just doesn't fill completely, and it invites listeners to an intimate setting and also personal space. Coming up next on those same lines is Miles Davis with It Never Entered My Mind.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 11:05:41। कहते हैं कि कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। बदन के कर्ब को वो भी समझ न पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी आंखों में मुस्कुराऊंगी। रंगे महफिल का वादा किया था आपसे, रंगे महफिल में आप सबका एक बार फिर खैर मकदम करती हूँ। हिना मौज का एक बार फिर आदाब कबूल कीजिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ AIRFM रेनबो पर। आकाशवाणी का ये चैनल जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं रंगे महफिल प्रोग्राम, जिसमें सजती है गज़लों की महफिल और बात होती है कलाम की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी गज़ल के साथ।

दोस्तों, मोहब्बत इंसान को मुकम्मल भी करती है और कभी कभी अकेला और अधूरा भी छोड़ जाती है। जब किसी का भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ कई ख्वाब, कई उम्मीदें और दिल का सुकून भी बिखर जाता है। शेर है कि हमने चाहा था जिसे दिल की हर धड़कन की तरह, हमने चाहा था जिसे दिल की हर धड़कन की तरह, वो मिला भी तो किसी अजनबी की तरह। कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक इंसान जिसको आप चाहते हैं, तलाशते हैं, वो सामने आने के बाद भी अपना सा महसूस नहीं कराता, और ऐसे में दिल और दिमाग की कैफियत कुछ अजीबोगरीब हो जाया करती है। रंगे महफिल प्रोग्राम चल रहा है, गज़ल मौसीकी का ये खूबसूरत सिलसिला रवा दवा है। आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज है आपके साथ।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11:25, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। इस प्रोग्राम में आप साथ हैं हिना मौज के आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बहुत खूबसूरत किसी ने लिखा है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। दोस्तों, मोहब्बत में धोखा खाया हुआ शख्स अक्सर मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छुपा होता है। वो लोगों से बातें करता है, मगर अपने जज्बात को अपने ही दिल में कैद रखता है। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जिस पर उसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। ऐसे हालात में इंसान बहुत सारी चीज़ों से हमकिनार होता है और बहुत सारी चीज़ों से दोचार होता है, लेकिन एहसास जज्बात का ये दरिया रवा दवा होता है तो ठहरता नहीं। ये कब, कहाँ और किस सिमत में बहेगा ये इंसान खुद भी नहीं जानता।

11:32 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। खूबसूरत लफ्ज़ मौसिकी का ये दरिया रवा दवा है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों, भरोसे की बात चल रही थी। भरोसा किसी का भी हो, अगर वो टूट जाता है तो तोड़ने पर ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाती है? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर झटका इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ज़रूर जाता है। वो पहले से ज़्यादा समझदार बन जाता है, एक तो रिश्तों की अहमियत को पहले से ज़्यादा समझने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिखरे हुए वजूद को समेटना भी सीख जाता है। हर इंसान को कुछ न कुछ इस तरीके से ज़िंदगी में करने को मिलता है, ताकि उसे इन सब चीज़ों के झटकों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। इंसान बहुत मासूम होता है जब वो एक वक्त में अपनी ज़िंदगी के एक पड़ाव पर होता है, और उसके बाद जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ों से हमकनार होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सलाहियत सोचने की, समझने की अहमियत हर उस चीज़ की महसूस होने लगती है जो उसको ज़िंदगी में चाहिए या फिर है और नहीं चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन इसके हर उस गोशे को शायर अपनी शायरी में समो लेने की ताकत रखता है जो और जिससे होकर हम गुज़रते हैं। एक आम इंसान हर वो चीज़ अपने अंदर महसूस करता है जो शायर लफ्ज़ों के साथ कागज़ पर उतार देता है। तभी तो ये नज़में, ये गज़लें, ये कलाम हमें अपना सा महसूस होता है।

तसव्वुर भी नहीं था वक्त यूं मजबूर कर देगा, तसव्वुर भी नहीं था वक्त यूं मजबूर कर देगा, मुझे एक लम्हा तेरी दस्तरस से दूर कर देगा। किसे मालूम था ऐ दोस्त संगे मसलहत एक दिन, किसे मालूम था ऐ दोस्त संगे मसलहत एक दिन, ताल्लुक के सभी आईने चकना चूर कर देगा। दोस्तों याद रखिए, किसी एक इंसान की बेवफाई पूरी दुनिया की सच्चाई नहीं हो सकती। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता और हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। इसीलिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मत कीजिए। खुद से मोहब्बत करना सीखिए, अपने ख्वाबों को जीना सीखिए और यकीन जानिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। इसीलिए हमेशा शमा को जलाए रखें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बेशक दोस्तों, ये मोहब्बत का अफसाना, मोहब्बत के किस्से बहुत ही अजीब होते हैं, लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत ना हो वो ज़िंदगी वीरान होती है। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत में हार जाना या हार जाने वाला शख्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में भी हार जाए। कई बार वही दर्द इंसान को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देता है। इसी उम्मीद और इसी ख्वाहिश के साथ कि आप सब मोहब्बत में मशगूल होंगे लेकिन मजबूत रहेंगे, हिना मौज आप सब से इस खूबसूरत से प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करने

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के 12 बजे हैं, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायाची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी।

केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। सरकार की डिजिटल शैक्षणिक व्यवस्था विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच स्थानांतरण सरल बना रही है और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन को गति प्रदान कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में रात 12:30 बजे स्पेन और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, जीरो आर शो में आपका स्वागत है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सिक्किम में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत आज नाथुला दर्रे का दौरा किया। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए।

मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आज साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट श्रृंखला खेलेगी। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। भारतीय टीम 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ 5वें स्थान पर है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। स्वागत है आपका सुहानी रात में।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले 1 वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की अवधि में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की अंतर

राष्ट्रीय टेस्ट श्रृंखला खेलेगी। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। भारतीय टीम 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ 5वें स्थान पर है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी एफएम रेनबो। आइए सुनवाएं हम आपको वो नगमे जो भुलाए ना बने।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्तीय स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट श्रृंखला खेलेगी। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। भारतीय टीम 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ 5वें स्थान पर है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी एफएम रेनबो। मिडनाइट मेलोडीज के साथ हम रहेंगे आपके संग।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के, क्षमा कीजिएगा, प्रातः के 4 बज रहे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के सभी रूपों और तरीकों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। सीरिया में दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट से कम 9 लोगों की मौत हो गई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। ICC महिला 2020 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। फाइनल में रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल सारे गामा। ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर आपके रेडियो सेट्स पर।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री स्नाए तकाची ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद और कट्टरपंथ के सभी रूपों और तरीकों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री स्नाए तकाची के साथ वार्ता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। श्री पुरी ने कहा कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनरी क्षमता 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक लोकहितकारी नीति है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचों सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 16 में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच के विजेता से होगा। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। रविवार को लॉर्ड्स में खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार समाप्त होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।